0: रहने देनी, क्योंकि मैंने शुरू में कहा ना कि इंसानियत तो मेरे ख्याल में शायद बहुत कम जो है वो पाकिस्तान में रह गई है।
1: ये देखें, ज़िम्मेदारी, एक चीज़ की ज़िम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ा काम होता है। हमारे मिनिस्टर्स वोट लेके आ जाते हैं और सिर्फ उनको जो चाहिए प्रोटोकॉल और वो चीज़ें वो इन्जॉय करते हैं, लेकिन अगर कोई भी ऐसा मामला होता है ज़िम्मेदारी नहीं लेते। हालांकि ये जो मामला हुआ है ये हेल्थ मिनिस्टर का काम है। दूसरी बात मैं आपको करूं कि हमारी आवाम भी और हमारे जो ये ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स हैं ये डॉक्टर को ब्लेम करते हैं इस चीज़ के लिए। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर का काम है इलाज करना। अगर डॉक्टर को एक रिसोर्स नहीं मिल रही, अब फॉर एग्जांपल मैं एक हॉस्पिटल की बात करूं कि वहां पे मैंने एक मरीज़ को सीटी स्कैन लिख के दिया, एक एक एक गरीब मरीज मेरे पास आया, उसके पास पैसे नहीं है अफोर्ड करने के कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट सीटी स्कैन करवा सके। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने उसके लिए सीटी स्कैन लिखा है, अब मेरे हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन नहीं है, इसकी में किसकी गलती है? ये डॉक्टर की गलती है, ये हेल्थ मिनिस्टर की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है? लेकिन सारा मलबा किस पे आता है? डॉक्टर पे। ठीक है जी, कि डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं चलाता, डॉक्टर सिर्फ हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करता है। हॉस्पिटल चलाने का काम हुकूमत का है और हेल्थ मिनिस्टर और एमएस उन चीजों
2: का होता है।
1: तो इंतजामिया जिम्मेदारी नहीं लेती और ये सबसे बड़ा एक नाकामी है हमारे माशरे के लिए।
2: नहीं, अभी आपने रजा साहब ये फरमाया कि हेल्थ मिनिस्टर है सैयद कमाल, मुस्तफा कमाल, ये देखें इसका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड कहा जाता है कि बड़ा अच्छा था। जब मेयर था कराची का, बड़े अच्छे काम किए उस दौर में इसने, लेकिन उसको उसने मट्टी में डाल दिया सारा, एक साइड पर रख के ना, जिस तरह उसने बयान दिए और एक खातून उसके साथ गुफ्तगू कर रही है और उसके साथ इस तरह वो इस लहजे में बात कर रहा है, बल्कि उसके साथ जो उसका वो पिट्ठू था वो उसको बड़े मतलब सख्त अल्फाज में मना कर रहा है, चुप करो, जुबान बंद करो, और ये वो यहाँ तक कह रहा है कि ये तुम्हारे बाप के लिए 20,000 रोज़ाना का ये खर्चा है और ये तुम्हारे बाप के लिए कर रहे हैं, तो क्या वो अपने
0: ज़ाती तौर पे कर रहे हैं? इरफान किरानी साहब आए हुए थे जो
2: देखा मैंने प्रोग्राम,
0: तो उनसे मैंने यही सवाल किया कि जब सियासतदान जो हमारे टैक्स पेयर से हमारी तनख्वाह, हम उनको तनख्वाह देते हैं, वो हमारे मुलाजम है बेसिकली, हम उनको, इनको तो खैर हमने इलेक्ट भी नहीं किया, इनको तो किसी और ने सिलेक्ट करके ले आए हैं, और एक वो जनाब कमाल साहब को तो एक ने उनकी औकात भी याद दिला दी कि भाईजान आप फॉर्म 47 पे आए हुए हैं, तो आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही छोड़ के चले गए। लेकिन सियासतदान, लेकिन उसमें फिर आते हैं वापस कि हमारा आवाम का कसूर है कि हमने इनको अपने सर पे बिठाया हुआ है, आते हैं हम इनको प्रोटोकॉल भी देते हैं, इन पे फूलों की पत्तियां भी फेंकते हैं, यहाँ पे अम्बेसडर देख लें हम, उन वो एक 12, 14, 16, 21, 20 ग्रेड के जो है वो आते हैं, लेकिन हम उनको इस तरह हिज एक्सीलेंसी जनाब आ गए हैं, पता नहीं केड़ी तोप है, लेकिन वो होते हैं हमारे मुलाजम है, हमारे लिए आते हैं। ये अभी मैं आपको अम्बेसी का वाकया सुनाता हूँ। अभी दो बच्चियाँ गई थी, एक का पासपोर्ट जो है वो गुम हो गया था, तो काफी अरसे से उसका बना नहीं है, तो वो बता रही थी कि वहां पे जो बैठे हुए थे उन्होंने जो उनसे सवाल किए हैं, ठीक है, वो आप पहले क्यों नहीं आई, आपने क्यों क्यों नहीं किया, आपने वो भाईजान आपके पास आई है, आपको जो रिक्वायर है क्या वो लेके आई है कागज या नहीं लेके आई? अच्छा, एक वो रिपोर्ट थी डेनिश में, तो वो कहते हैं ये क्या, तो कहती है आगे से वो भी बच्ची यहाँ की जमी पली, कहती है क्या आपको डेनिश नहीं पढ़नी आती? जाहिर है वो तो पाकिस्तान से, वो कहते हैं नहीं आते। वो उसने फिर बताया कि भाईजान ये रिपोर्ट इसके लिए है, ठीक है। तो हमारे रवैये जो है ना, हमारा, हमने अपने मुलाजमों को भी अपने, लेकिन जो गरीब मुलाजम अपने घर में रखते हैं ना झाड़ू पोछे के लिए, जो सलूक हम उनके साथ करते हैं यकीन करें वो भी जो है ना दिल जला देते हैं। तो लेकिन ये जिनके पास थोड़ा सा आ जाता है ना इख्तियार, आप जाए ना पासपोर्ट बनवाने, वो अगर आपको ना देना चाहे ना तो आपको जलील करते रहेंगे महीना पूरा। तो ये हमारा सिस्टम है, हमने ना, लेकिन हमने खुद इन चीजों को जो है वो खराब किया हुआ। जब तक हम आवाम अपना हक खुद नहीं मांगेंगे ना इन लोगों से जिनको हम अपनी पैसों से तनख्वाह देते हैं, तब तक ये लोग भी जो है ना वो नहीं सुधरेंगे।
2: चलें जी, ये हमारा अलमिया है और अभी पता नहीं कहाँ तक ये चलेगा, उम्मीद ये की जाती है
0: कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनो,
2: आने वाला वक्त हम ये उम्मीद करते हैं कि अच्छा आएगा। इसके लिए वही बात मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना पड़ेगा। डॉक्टर सलमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बातें बहुत करने वाली थी लेकिन वक्त की कमी की वजह से, लेकिन जो भी हुई जितनी भी हुई अच्छी हुई, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से भी कोई ऐसी बात हमारे देखने और सुनने वालों को अगर नागवार गुजरी हो तो उसके लिए माजरत भी चाहते हैं, हमारी कोशिश हमेशा यही होती है। जी
1: लास्ट बात करूँगा, मैं आजकल की जो नौजवान नस्ल है मैं उनको सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा कि जिनके वालिदैन हयात हैं, जिनके वालिदैन वफात हो गए हैं उनको अल्लाह मगफिरत दे, और जिनके वालिदैन हयात हैं तो उनकी जितनी हो सके उनकी खिदमत करें और अपने जो कि फील्ड है उसमें आप मेहनत करें, उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, तो इंशाल्लाह आपका हर काम आसान होगा। और मैं इस चीज़ को मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अपने वालदेन को बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करें, उनको खुश रखें, तो इंशाल्लाह आप इस दुनिया में कामयाब हो जाएंगे।
2: थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम, और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद और डेनमार्क हमेशा के लिए पाइंदाबाद। शुक्रिया।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984। ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम वतन।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: मोहतरम सामेईन और नाजरीन, आपको आदाब और सलाम। आज बाशिक कॉर्नर प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमने आज एक बहुत इम्पोर्टेंट और जाने पहचाने पाकिस्तानी बैकग्राउंड के सांसदान हैं, उनको बुलाया है। उनके साथ काफ़ी सवाल जवाब होंगे क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो इस हुकूमत में शामिल है। और इरफान गिलानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमें। बजाय इसके कि मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ, आप थोड़ा सा बताइए अपने जो इलेक्शन में आपकी कामयाबी हुई थी ब्रॉनबी कमून से, उसमें कौन कौन सी नशस्तें हम जीते थे।
2: जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने दो इलेक्शन लड़े थे, नवंबर में 18 नवंबर को कमून रीजन का इलेक्शन कट्ठे हुआ था
1: पिछले साल।
2: जी बिल्कुल, 2025 में। तो कमून में एक सीट निकली थी हमारी रेडिकल विंस्था की, मैं इस पेस कैंडिडेट था वहाँ पे पहुंचे कमून में। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंग में हम भी कॉन्स्टिट्यूएंग का हिस्सा बने और वहाँ पे इस वक्त मैं फर्स्ट वीसी पोमेजता हूँ। इकोनॉमिक वेल जो है, जो बेसिकली स्ट्रेटजी रूम होता है पूरी कमून का, उसका भी मेंबर हूँ।
1: नायब मेयर है आप?
2: जी बिल्कुल, डिप्टी मेयर हूँ। जी बिल्कुल। और उसके साथ फिर पानस्कूल वेल और कुलचुआई खत के उदवेल का भी मेंबर हूँ और फिर फॉर्मन हूँ फल्का पीसनिंग का उदवेल का।
1: अच्छा, ये बताइए कि आपने जो रीजन्स हैं डेनमार्क के, चाहो उसका भी इंतखाब लड़ा था?
2: जी, मैंने रीजन का भी लड़ा था, उसमें भी मैं कामयाब हुआ।
1: अच्छा, आप उसके भी?
2: जी, मैं उसका भी मेंबर हूँ।
1: डबल सीट है आपके
2: जी
1: पास।
2: तो रीजन ईस्ट डेनमार्क जो है, जो एक पहले 5 रीजन्स थे, वो अब 1 जनवरी 2027 से गैक्यून इश्त हो जाएगा। तो वो 28 लाख जो अफराद हैं तकरीबन आधी
1: है।
2: हाँ जी, तकरीबन आधी आबादी जो डेनमार्क की है वो रीजन ईस्ट डेनमार्क के। तो वहाँ पे 47 जो है वो मेंबर्स हैं उसके नई रीजन ईस्ट डेनमार्क के, तो उसका एक मैं भी मेंबर हूँ।
1: तो आप ये बताइए कि म्यूनसिपैलिटी तो ठीक है, बल्दिया है वो जिस कमून में आप रहते हैं, रीजन और म्यूनसिपैलिटी में फ़र्क थोड़ा सा बता दीजिए और ये बताइए कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं।
2: जी देखिए, म्यूनसिपैलिटी जो है वो लोकल जो इश्यूज़ होते हैं, रोड्स के इश्यूज़ हैं और इसी तरह स्कूल मेन होता है, किंडरगार्टन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इस तरह की वो, और जॉब सेंटर और जो इल्काम्स
1: एम्प्लॉयमेंट वगैरह,
2: एम्प्लॉयमेंट और बूढ़ों के जो वेलफेयर के जो इश्यूज़ होते हैं, फ्लाई, वो कमून की जिम्मेदारी में आती है, उनकी डोमेन में आती है चीज़। जो रीजन है वो बाय एंड लार्ज जो है उसकी जिम्मेदारी 80% काम जो है वो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, हॉस्पिटल्स के साथ। अब जो है वो नया सुनह, जो पहले जो है वो ये जो आपके घरों में जो फ्लाई का काम होता है बूढ़ों के साथ और भी जो बीमारियां होती हैं, वो अब जिम्मेदारी पहले कमूनों के पास थी ज़्यादा, अब वो कुछ मुंतकिल हो गई है रीजन में। वो ये है कि एक सुनह को फॉर्म आया था, पार्लियामेंट ने पास किया था सेहत के बारे में बिल्कुल, तो 2024 में वो आया था और उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होनी थी। उसी के तहत ये रीजन भी जो है बने हैं नए, या उनकी तश्कीलें नौ हुई है। तो उसमें जो है वो ये था कि इस सारे एरिया को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और उसके अंदर जो माजी में जो मतलब वो जो जिसको डेजिश में कहते हैं ना, फेल मिल्म सो स्टूल, एक सिटीज़न होता है वो बेचारा कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो उसके अंदर ज़्यादा इंटीग्रेशन क्रिएट की जाए।
1: अच्छा,
2: उसी के तहत एक आपकी दिलचस्पी की चीज़ होगी, एक तो रीजन्स हैं लेकिन उसके तहत अब सुनह स्कूल बन गए हैं। तो वो सुनह स्कूल का काम ये है कि उसमें जो कमून के नुमाइंदगी भी होती है और रीजन की नुमाइंदगी भी होती है।
1: अच्छा,
2: तो मैं दो सुनह स्कूल का मेंबर हूँ, एक क्विबन हाउस और माइन नोआ का।
1: तो दो कुर्सी पर बैठे हुए
2: जी, तो एक आमा वेस्टाइन की जो कमूने हैं उसके सुनह स्कूल में भी हूँ रीजन की तरफ से नुमाइंदा, और इसी तरह जो है मैं जो क्विबन हाउस और माइन नोआ है उसका अभी मैं निस्ट फॉरमैन बन गया हूँ।
1: तो ये बताइए कि सिर्फ सेहत के बारे में रीजन काम करता है या
2: सेहत और रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कॉलेज का जो निज़ाम है वो भी इसके तहत आता है।
1: तो आपने खुद बताया ऐसे लोग कंफ्यूज ही हो जाते कि भाई किधर जाएं
2: जी,
1: क्योंकि पहले था कि मुझे याद है کہ ہر میونسپیلٹی میں ان کے اپنے ہاسپٹل وغیرہ ہوتے تھے اور وہ کمون جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرتا تھا. میں فرسویا میں رہتا ہوں, ہسپتال تھا, انہوں نے سب کو مرج کر کے ایک ہسپتال بنایا. تو کیا اس سے سینٹرلائز نہیں ہو جاتی چیزیں؟
2: یہی مقصد ہے کہ وہ جو سینٹرلائزیشن ہوئی تھی اس کو کسی طریقے سے اب ڈی سینٹرلائز بھی کیا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہاسپٹلز میں ہوتی ہیں, اور جب آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. 3 ستمبر پاکستان میں جمعرات کی دوپہر. آصم منیر ڈیفیکٹو فارم 47 ملٹری راج ڈے 278. آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے, جہاں پر دلیر جج جسٹس راحیل کامران شیخ نے استعفیٰ دے دیا ہے اور سکور ہو گیا ہے 7-0. جی ہاں, 7-0. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے, آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. راحیل کامران صاحب نے آج جو استعفیٰ دیا ہے وہ واضح طور پر بغاوت ہے اس ظلم کے نظام کے خلاف جو پاکستان کے اوپر اس وقت فیلڈ مارشل ریٹائرڈ سید آصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری اور ان کے ساتھی ملٹری جنرلز نے امپوز کر رکھا ہے. یہ چوتھے جج ہیں لاہور ہائی کورٹ سے جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اس سے پہلے جسٹس شاہد جمیل خان استعفیٰ دے چکے ہیں, وہ بھی ایک دبنگ اور دلیر جج تھے. اس کے بعد جسٹس چودھری عبدالعزیز وہ بھی استعفیٰ دے چکے ہیں. پھر جسٹس شمس محمود مرزا بڑے دبنگ جج تھے, انہوں نے بھی یہ 27ویں ترمیم کے بعد آپ یہی کہہ لیجئے کہ ایک قسم کے احتجاج کے طور پر ان کا استعفیٰ بھی سامنے آیا تھا. اب بہت ہی دلیر اور بہت ہی قابل جسٹس محمد راحیل کامران شیخ, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. یہ بہت ہی قابل جج تھے, پہلے بہت ہی قابل وکیل تھے, پھر انہیں خود سے کہا گیا کہ آپ جج بنے ضرور, وکالت سے اس طرف لایا گیا اور پھر انہیں ریڈنڈنٹ کر دیا گیا. انہیں اس طرح کے مقدمات دیے گئے جہاں سے وہ کوئی افیکٹو جو کورٹ کی ججمنٹس ہیں وہ دے کر جو موجودہ جرنلز کی گیم ہے اس میں کوئی روڑا نہ اٹکا سکے. لیکن جتنی دیر بھی جج رہے دبنگ طریقے سے کوشش کرتے رہے عوام کے حق میں فیصلے دینے کی, انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق اور جو بھی متوسط طبقوں کے کیسز ان کے سامنے جاتے رہے. ہم نے یہی سنا کہ انہوں نے بہت عمدہ طریقے سے لوگوں کو انصاف دینے کا, کم از کم اپنے تائیں انہوں نے صحیح کی. آج ان کا استعفیٰ جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے کوئی وجہ تو نہیں بتائی, لیکن بتا بھی دی کیونکہ سکور اب ہو گیا ہے 7-0. آپ کہیں گے وہ کیسے, 4 تو میں نے آپ کو بتا دیے. یہ ججز جو لاہور ہائی کورٹ سے استعفیٰ دے چکے ہیں پچھلے انہی 1-2 سالوں کے اندر. اس سے پہلے یاد کیجئے 3 ججز جو ہیں کم از کم سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی اسی سارے معاملے کے اندر استعفیٰ دے چکے ہیں. تو اگر ان 4 اور 3 کو ملائیں تو یہ 7 ہو جاتے ہیں. کم از کم جو ہائر جوڈیشری کے ججز ہیں ان کا مقابلہ اگر آپ اپنے ملٹری جنرلز کے ساتھ کریں تو وہاں سے سکور ہے 0 کا. تو 7-0 کا مقابلہ ہے, مطلب ہمارے ملٹری جنرلز میں سے کوئی ایک ایسا نہیں جو یہ کہے, یا ہماری ایئر فورس میں سے یا نیوی میں سے, کہ یہ جو کچھ بھی فیلڈ مارشل ریٹائرڈ سید آصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری اور ان کے ساتھی کر رہے ہیں یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے, ہم استعفیٰ دیتے ہیں. لیکن کم از کم ہماری جو ہائر یا سپیریئر جوڈیشری ہے اس میں سے 7 لوگ ابھی تک استعفیٰ دے چکے ہیں. ہم ان تمام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ وہ پتر ہیں جو ہٹانتے نہیں وکدے. ان میں سے کچھ نے پہلے ماضی میں غلطیاں بھی کی, جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ جسٹس عطر من اللہ ہوں یا جسٹس منصور صاحب ہوں, انہوں نے بڑے دبنگ اور دلیر فیصلے بھی کیے لیکن پھر 90 دن کے الیکشنز کے اندر آ کر ان سے بھول اور چوک بھی ہوئی. بہرحال آخر پر انہوں نے اپنے استعفے کے ساتھ اس سب چیزوں کا مداوعہ کیا. تو ایک طرف سویلینز کی طرف سے رول آف لا کے لیے, آپ یہ کہیے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے لیے قربانی دی گئی ہے, اور 7 کے قریب ججز جو ہیں وہ استعفے دے کر گھر جا چکے ہیں. لیکن یہ معاملہ شاید تب اور بھی افیکٹو ہوگا جب یہ ہر طرف سے لوگ اپنے ضمیر کی آواز پر اسی طریقے سے بولیں گے. انفارچونیٹلی ہماری ملٹری کے اندر ایسی کوئی آواز ابھی تک سننے میں نہیں آئی. آپ جو ظاہر ہے سرونگ ہیں وہ تو چھوڑ دیجئے, انہوں نے تو جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو بھی دھمکایا ہوا ہے, ان کو بھی چپ کروانے کے لیے ہر قسم کا حربہ جو ہے وہ استعمال کر چکے ہیں. تو یہ پہلی خبر تھی لاہور ہائی کورٹ سے. ایک طرف سے تو افسوسناک خبر ہے کیونکہ آج ایک اور دبنگ جج جو تھے ان کو اپنا عہدہ چھوڑ کر گھر جانا پڑا, کیونکہ ان سے قانون کے مطابق جو ان کی طاقت تھی وہ پہلے ہی چھینی جا چکی تھی. چھٹیوں کے بعد ان کا تبادلہ جو ہے وہ ملتان بینچ میں کیا ہوا تھا. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ملتان بینچ کی طرف کی وجہ سے استعفیٰ دے رہے تھے, کیونکہ یہ تو معمول کی بات ہے, ججز ملتان بینچ بھی بہاولپور بینچ بھی جاتے رہتے ہیں اور پھر پرنسپل سیٹ پر بھی واپس آتے رہتے ہیں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, یہ تو ہو گئی. اب اگلی خبر ماجد نظامی, وہ کہتے ہیں کہ وقت آ پہنچا فوج میں اہم تقرریوں کا, کیونکہ پچھلے 2 سے 3 سال سے یہ تقرریاں فیلڈ مارشل ریٹائرڈ سید آصف منیر تمغہ امتیاز ملٹری نے روک رکھی ہیں. ہمیں ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ادارہ ہے, اداروں میں یہ کام نہیں ہوتے جو فیلڈ مارشل نے کیے ہیں. اداروں میں چیزیں نظم و ضبط اور ایک ترتیب سے چلتی ہیں. جہاں ترتیب نہ ہو, جہاں کوئی بھی اکاؤنٹبلٹی کا, پروموشن کا یا کسی بھی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار نہ ہو, واضح طریقہ کار نہ ہو, فرد واحد کی حکومت ہو, اس کو ادارہ نہیں کہتے. تو جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت, جو اپنے آپ کو ادارے میں کام کرنے والے کہتے ہیں, وہ اپنی غلط فہمی کی تصحیح کر لیں کہ آپ ایک فرد واحد کے نیچے کام کر رہے ہیں, کسی ادارے میں کام نہیں کر رہے. فرد واحد جو ڈیسائیڈ کرے گا اس ادارے کا وہی قانون ہے, وہی انصاف ہے. بہرحال ماجد نظامی کہتے ہیں کہ 10 کے قریب لیفٹنٹ جنرلز جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے جانے ہیں آنے والے دنوں کے اندر. یہ ظاہر ہے اب یہ موقع آن پہنچا ہے, کیونکہ اگلے مہینے کوئی اتنے ہی آپ کہہ لیجئے, یہ شاید اس سے بھی زیادہ, اب جو لیفٹنٹ جنرلز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ ایکسٹینشنز کے بعد دوبارہ ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. کئیوں کو ایکسٹینشن ملی ہوئی ہے اور کئیوں کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے اور وہ گھروں کو جا رہے ہیں. اب کیونکہ جو نئی آئینی ترمیم کروائی ہے, آئینی ترمیم تو اسے آپ نہیں کہیں گے, لیکن جو اسمبلی سے نئی ترمیم کروائی ہے, اس ترمیم کے بعد جو سی ڈی ایف ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ چیف آف ڈیفینس فورسز انہوں نے اپنے نیچے سب کچھ لے لیا ہے. اب یہ جتنے بھی نئے جرنلز آ رہے ہیں یا جو پہلے جرنلز بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کس کو ایکسٹینشن دینی ہے, کس کو فارغ کرنا ہے, کس کو رکھنا ہے, یہ فیصلہ بھی وہی کریں گے. اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ 2-3 چیزیں بہت ہی اہم ہیں. ایک تو کیا موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جو آصف ملک ہیں, ان کی ایکسٹینشن, وہ پہلے ہی ایکسٹینشن پر چل رہے ہیں, ویسے تو پورا ملک ہی ایکسٹینشن پر ہے, وہ بھی ایکسٹینشن پر ہے, تو کیا ان کا یہ عہدہ اب ختم کر کے ان کو گھر بھیجا جائے گا یا ایکسٹینشن پر مزید ایکسٹینشن دی جائے گی؟ پھر وائس آرمی چیف کس کو لگایا جائے گا؟ یہ جو وائس آرمی چیف ہوگا اس کا عہدہ بھی خالی ہے اور فیلڈ مارشل نے ابھی تک کسی کو نہیں لگایا. پھر جو سی جی ایس ہے وہ کون ہوگا؟ وہ بھی بہت ہی اہم عہدہ ہے فوج کے اندر, اس پر اپوائنٹمنٹ کس کی جائے گی؟ اس کو بھی دبا کر رکھا ہوا ہے, کیونکہ جو پہلے سی جی ایس تھے ان کو آپ کو پتا ہے کہ 4-star جنرل بنا کے وہ کمانڈ سینٹر کی طرف یا کمانڈ جو سروس تھی اس کی طرف بھیج دیا, جہاں پر ایٹم بم وغیرہ کا. لیکن اب وہ اس کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری طرح سے مختار ہیں, بلکہ اب فیلڈ مارشل ریٹائرڈ سید آصف منیر کے پاس ہی وہ سارا کنٹرول بھی ہے. تو اب یہ 10 لیفٹنٹ جنرلز کی 4 سالہ مدت آنے والے ہفتوں میں مکمل ہو رہی ہے, مطلب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے انہی کی تقرریاں ہونی ہیں. اس سے پہلے شاید 20 سال پہلے ایسی کوئی صورتحال تھی جب 4 کے قریب جنرلز کی ایک ہی بار کوئی ترقی وغیرہ کی گئی تھی, ورنہ فوج کے اندر جو نظام ہے وہ چلتا رہتا ہے اپنے وقت کے اوپر. یہ 4 یا شاید نمبر میں غلط کہہ رہا ہوں اس ٹائم, لیکن اتنی بڑی تعداد میں پہلے فوج میں یہ سب کچھ دیکھنے میں شاید نہیں ملا کہ ایک ہی دفعہ سے اتنے سارے لیفٹنٹ جنرلز ریٹائر ہو رہے ہوں اور پیچھے سے کسی کی بھی ترقی نہ کی ہو, سب کو روک کے رکھا ہو, کیونکہ فیلڈ مارشل اپنی بیٹنگ کر رہے ہیں یا اپنی فیلڈنگ لگا رہے ہیں اور اپنی مرضی کے افسران کو فوج کے مختلف عہدوں پر لگا کر اپنا قبضہ جو ہے وہ لمبا عرصہ چلانا چاہتے ہیں. دوسری طرف سویلینز کو صوبوں کے نام پر لڑوانا چاہتے ہیں, دوسری چیزوں میں الجھانا چاہتے ہیں, اور فوج کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں, تقرریاں ہیں, ان کو دبا کے بیٹھے ہیں تاکہ وہاں پر بھی اپنے اقتدار کو وہ مسلط رکھ سکیں. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ نادرا کے جو چیئرمین ہیں ان کا عہدہ اب کس کو دیا جاتا ہے, انہی کے پاس رہتا ہے جو موجود ہیں, یا ان کو مطلب ایکسٹینشن دی جاتی ہے یا کوئی نیا لایا جاتا ہے. پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو ڈیفینس انڈسٹریل پروڈکشن اتھارٹی ہے اور ملٹری انٹیلیجنس ہے, ان کے اوپر کیا کیا جاتا ہے. ملٹری انٹیلیجنس میں عمومی طور پر ابھی تک تو ایک میجر جنرل جو ہے وہ اسے ہیڈ کرتا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا اس ڈپارٹمنٹ میں بھی اب ایک لیفٹنٹ جنرل کو لایا جاتا ہے. تو یہ سارے سوال ہیں جو آنے والے دنوں میں, آنے والے ہفتوں میں کلیئر ہو جائیں گے جب فیلڈ مارشل ریٹائرڈ آصف منیر یا تو اپنے ان ساتھیوں کو جو 10 ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, انہیں یا تو ایکسٹینشنز دیں گے اور یا پھر ان کی جگہ پر نئے لیفٹنٹ جرنلز جو ہیں انہیں پروموٹ کیا جائے گا. اچھا, ایک طرف تو یہ چل رہا ہے, دوسری طرف ذرا سن لیجئے, کیونکہ فوج سے ریلیٹڈ ہی خبریں ہیں تو وہ بھی آپ کو دے دیں. گزشتہ روز جنوبی وزیرستان کی تحصیل برمل کے علاقے آزم ورسک میں पाकिस्तानी फौज के क्वाड कॉप्टर की फायरिंग से एक मासूम बच्ची और दो कमसन भाई शदीद जख्मी हुए थे। आज दो ये जो नन्हे बच्चे थे जो इसमें जख्मी हुए थे वो जख्मों की ताब ना ला सके और वो शहीद हो गए। इनकी नन्ही बहन अभी भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और हॉस्पिटल के अंदर अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। तो ये सूरत हाल है। आपको पता है कि इमरान खान वाज़े तौर पर जेल से ही इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं कि ऐसे हमले, ऐसे ड्रोन क्वाडकॉप्टर्स हमले जिनसे मासूम सिविलियंस की जाने जाएं, उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ना उन्होंने कभी इस पर बयान दिया, ना उन्होंने FIR दर्ज की, और वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोश है। बल्कि दूसरे लफ्जों में इस तरफ वो नजर भी नहीं उठा रहे। ऐसे लगता है जैसे उनके सूबे में ये हो ही नहीं रहा, उनको इससे कोई परवाह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। BLA अटैक्ड पश्तून ड्राइवर्स, मतलब कि अब BLA जो है वो पहले पंजाबी ड्राइवर्स को सिर्फ अटैक करती थी, अब उन्होंने पश्तून ड्राइवर्स को भी अटैक करना शुरू कर दिया है और ट्रक्स जो हैं उनको आग लगा दी है। आप देख सकते हैं सड़कों के ऊपर ट्रकों को रोक के उनको आग लगा दी जाती है और उनके अंदर जितना भी सामान मौजूद होता है जाहिर है जल के खाकसर हो जाता है। उससे जो वहाँ का लोकल ट्रेड है, बिजनेस है, आप उसके बारे में खुद ही सोच सकते हैं। ये चागी बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, वहाँ पर वो चेकिंग करते रहे हैं ट्रक्स की, ड्राइवर्स की आइडेंटिटी कन्फर्म करके अब पश्तून ड्राइवर्स को भी निशाना बना रहे हैं। फिर बलूचिस्तान में हमारे पास एक वीडियो है जिसमें एक पंजाबी ड्राइवर जो है वो बलूचिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है वहां से दूसरे पंजाबी ड्राइवर्स को ये मैसेज दे रहा है कि खुदा का वास्ता इस तरफ मत आना, यहां हालात अच्छे नहीं है। क्या मैसेज है पंजाबी ड्राइवर का, सुनिए।
1: अस्सलाम वालेकुम सब ड्राइवरों नु, मेरी तरफ सलाम हो गया भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? उम्मीद करता सारे भाई खैरियत नाल हो सो। भाई जान मैं जी इस टाइम बलूचिस्तान है, बलोचिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, बहुत ही ज्यादा खराब हैं, इंतहा दे हालात खराब हैं। मैं सब ड्राइवरों नू गुजारिश करेसा, जितने भी मेरे पंजाबी भाई हैं, जितने भी मेरे पंजाबी भाई हैं, कोई चाहे मुजदे वाला है, चाहे कोई शाहजोर वाला है, चाहे कोई बैडफोर्ड वाला है, चाहे कोई FP वाला है, चाहे कोई सैंपल वाला है, मैं सब दे अगे गुजारिश करेसा, कम अज कम अपना नहीं, अपने बच्चों का दिफा करो, अपने बच्चों का ख्याल करो, अपने मां बाप का, अपने भैन भाइयों का। जिंदगी इंसान को एक दफा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। असी तो फंस गए मेरे भाई आगे, असी कोशिश करें निकलने की, अल्लाह खैर करे।
0: सुन लिया आपने, तो ये सूरत हाल है। एक तरफ फील्ड मार्शल जो है वो अपनी बिसात लगा रहे हैं, एक तरफ वो पूरी दुनिया के मसले खत्म करवा रहे हैं और दूसरी तरफ BLA ट्रकों को जला रही है। हमारे बच्चे क्वाड कॉप्टर के हमलों से मारे जा रहे हैं और ड्राइवर मैसेज दे रहे हैं कि खुदा का वास्ता है इस तरफ कोई मत आए। आगे आपके सामने एक एक्सक्लूसिव खबर रख देते हैं। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर है जो आपको शायद कहीं और से नहीं मिलेगी। ये एक्सक्लूसिव खबर ये है कि जो DG ISPR हैं उनकी नई एक उनको असाइनमेंट दी गई है और वो असाइनमेंट ये दी गई है कि अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बनना है। आप हैरान होंगे वो कैसे। अमूमी तौर पर जो फेडरल कैबिनेट होती है, वफाकी काबीना, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करती है। DG ISPR जो होते हैं वो हर वजीर के मातहत बनते हैं। जो फेडरल कैबिनेट का वजीर होता है ओहदे के हिसाब से वो डायरेक्टली उसके रिपोर्टिंग में तो वो नहीं आते, हर वजीर के, वजीर दिफा की रिपोर्टिंग में तो वो आएंगे, लेकिन फेडरल कैबिनेट के हर वजीर और मशीर से वो ओहदे के हिसाब से नीचे होते हैं। लेकिन अब ये तमाम वजीर जो हैं वो DG ISPR को रिपोर्ट करेंगे। आप यही समझ लीजिए कि एक किस्म का DG ISPR को अब वजीर आजम ही लगा दिया गया है। यह बहुत ही मुसद्दका खबर हम आपको दे रहे हैं कि नई स्ट्रेटजी बनाई गई है जिसमें DG ISPR को रिपोर्ट करेंगे या DG ISPR के सामने अपनी परफॉर्मेंस रखेंगे तमाम के तमाम मिनिस्टर्स, और उसके लिए एक कम्युनिकेशन का मजबूत सिस्टम बनाया गया है। उस कम्युनिकेशन के सिस्टम को कंट्रोल करेंगे DG ISPR। तमाम जितने भी फेडरल मिनिस्टर्स या एडवाइजर्स हैं उन सबको वो कम्युनिकेशन जाएगी हर रोज, और ये देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा कि सूबों के मामलात हों या फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर की जो प्रायोरिटीज हैं उनके ऊपर कौन कौन सा वजीर जो है वो बयान देता है, और जो भी उस पर बयान देता है उसको शेयर किया जाएगा उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। ताकि बाकी तमाम वजीरों को पता चले कि ये इस शख्स ने बयान दिया है तो मुझे भी अब देना है, या किस किस ने दिया है। तो जो देंगे बयान उनको शाबाश दी जाएगी, उनको शाबाश कहा जाएगा, और जो नहीं देंगे बयान उनकी जाहिर है एक किस्म की सरजनश भी है और खामोश पैगाम भी है कि आप अगर ये पैगाम नहीं देंगे तो हम आपको देख भी रहे हैं और गिन भी रहे हैं। ये जो नया कम्युनिकेशन का सिस्टम जनरेट किया है डीजी आईएसपीआर साहब ने, गालिबन इसके बाद ही जो एहसन इकबाल हैं उन बेचारों ने भी कल सूबों के हक में बयान दिया है। और आपको यह भी इंटरेस्टिंग बात बता दें कि उस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर एहसन इकबाल का यह बयान शेयर भी किया गया, और उससे पहले मुस्तफा कमाल और दूसरे जो वजीर हैं उनके बयान भी वहां पर बताए गए कि ये देखिए ये कितने अच्छे बच्चे हैं कि इन्होंने वैसे बयान दिए हैं जैसे बयान फील्ड मार्शल साहब चाहते हैं। तो अब डीजी साहब को मॉनिटर लगा दिया गया है, आप ये कहें कि खड़पैंच लगा दिया गया है, आपको ये तो पता ही है कि डीजी साहब जो है वो 58 को 58 कहते हैं, तो अब डीजी साहब को कोई एक 58 नंबरी वहां पर आप ये कहिए कि उन्होंने मॉनिटर लगा दिया है पूरी की पूरी फेडरल कैबिनेट के ऊपर, और वो पूरी कैबिनेट पर नजर रखेंगे। और जैसे आपको पता है कि मदारी जो है वो तमाशा करवाता है, तो कैबिनेट पूरी बंदर होगी, डीजी साहब के हाथ में डंडा होगा और वो मदारी होंगे और वो बंदर को वैसे नचाएंगे जैसा उनका दिल करेगा। ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास जो स्टोरी है ये हमने एक से ज्यादा सोर्सेस से कंफर्म करके हम पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने रख रहे हैं। आगे चलते हैं। लंदन में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बादशाह साहब ने बुलाया, बादशाह चार्ल्स ने, किंग चार्ल्स ने अपने यहां उन्हें एक दावत पर बुलाया, खाने पर बुलाया। वहां पर टीम जब जानी थी तो उसके नंबर शंबर गिने गए तो टीम के नंबर्स कम थे। अब उससे ये लगा कि यार ये तो बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे जो बहुत ही ब्रिलियंट माइंड्स हैं हमारे जर्नल्स और उनके लगाए गए जो डाउट हैं वो काम डालने के बाद सोचते हैं। आपको याद होगा कि दो ही दिन पहले 7 प्लेयर्स को निकाल दिया गया था टीम से, और उनके साथ हेड कोच को और बॉलिंग कोच को भी निकाल दिया गया था। लेकिन फिर क्या किया गया, फिर टेलीग्राफ ये कह रहा है, ये टेलीग्राफ की स्टोरी है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को ये लगा कि हो सकता है, ये जाहिर है अभी स्टोरी डेवलपिंग है, हम इसे हतमी तौर पर तो नहीं कह सकते, जो रिपोर्ट हुआ है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पर, टेलीग्राफ पर, वो आपके सामने रख रहे हैं। उसमें ये कहा गया कि जिनको निकाला गया था उन सबको ये कहा गया कि अब वापस आ जाएं, आप कम अज कम ये खाना अटेंड कर लें बादशाह चार्ल्स का, उसके बाद आपको टीम से तो निकाल ही दिया लेकिन जाते जाते ये खाना अटेंड कर लें ताकि नंबर जरा बड़ा हो जाए, भरी भरी टीम लगे, क्योंकि उन्हें ये शक थी कि कहीं ये ना हो कि थोड़े से प्लेयर लगें और हमारी बेइज्जती हो, क्योंकि शायद नए प्लेयर्स अभी लंदन पहुंचे नहीं होंगे। तो जिन लोगों को निकाला गया था उनमें से फिर मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, अली उस्मान, आमिर जमाल, मोहम्मद अवैस और खुर्रम शहजाद को निकाला गया था। इनमें से फिर अली उस्मान, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अवैस जफर ने इस खाने में शिरकत की, और दो तीन दूसरे जो लोग थे उन्होंने शिरकत नहीं की, और उनमें से एक प्लेयर ने यह भी कहा एहतजाजन कि मैं शिरकत नहीं करूंगा, आपने जिस तरह से, जिस बेइज्जती के साथ हमें टीम से अलग किया है। तो ये एक अलग ही वहां पर पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बनी, लेकिन साथ ही साथ ये कोई नई सूरत हाल तो नहीं है, ये पाक सरजमीन का अब हार्ट स्टेट जो आसिम मुनीर की है उसका यही इंतजाम है कि पहले खिलाड़ियों को निकाल दो फिर उन्हें वापस बुला लो कि खाना अटेंड कर लो, निकाला तो तुम्हें हुआ ही है, पहले चीनी जो है वो मुल्क से एक्सपोर्ट कर दो फिर उसे इम्पोर्ट कर लो, फिर जो इम्पोर्ट किया उसे वापस फिर एक्सपोर्ट कर दो। तो ये नया काम नहीं है। इसी तरीके से आपने ये भी देखा कि CDF जो है, चेयरमैन कह लें उन्हें, चीफ कह लें ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो साहब जो हैं उन्होंने सूबे बनाने हैं सिविलियंस के लिए, क्योंकि यूनिट्स को छोटा करना है, डिसेंट्रलाइज करना है, लेकिन मिलिट्री सारी सेंट्रलाइज करनी है, एयरफोर्स भी नीचे लेनी है, नेवी भी नीचे लेनी है, आर्मी भी नीचे लेनी, वहां सब कुछ बड़ा करना, वहां यूनिट बड़ा करना है, वहां सब कुछ सेंट्रलाइज करना है, लेकिन सिविलियंस के लिए जो इंतजाम हैं वहां डिसेंट्रलाइज करना है। और मुनाफ़कत देखिए, अभी बलूचिस्तान के मुआहिदीन से बात करते हुए कह रहे थे कि पॉलिटिशियंस को कम अज कम जमहूरियत में सियासत में 50% वोट लेने चाहिए जीतने के लिए। वहां पर कवानीन याद हैं, खुद ना ही PMA से तो ये नहीं है, OTS हैं, ना ही अपने OTS का हल्फ याद है, ना ही PMA का हल्फ याद है, और ना ही अपनी रिटायरमेंट याद है। खुद अपने ऊपर कोई कानून नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिशियंस को कहते हैं कि आपने 50% वोट कम से कम लेकर आने हैं, तो फिर आपने आगे बढ़ना है, वरना आप जो है जो भी करेंगे वो गलत करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो इमरान खान के बेटों के इंटरव्यूज हैं जो धड़ाधड़ अब आ रहे हैं। टाइम्स रेडियो ने उनका लेटेस्ट इंटरव्यू किया है, जिसमें कासिम खान और सुलेमान खान ने बहुत खुल के बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे वालिद को 6x8 के एक सेल में रखा गया है, वहां कम रोशनी है, उनको किताबें भी नहीं दी जाती, और हमारे वालिद को 24 घंटों में से सिर्फ एक घंटा सेल से बाहर निकाला जाता है। जेल में बहुत से लोग हेपेटाइटिस से मर रहे हैं, हमारे वालिद के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि कल को ये बहाना किया जाए कि वो कुदरती मौत मर गए हैं। मतलब उन्हें इतना तंग किया जा रहा है, उनके इर्द गिर्द माहौल इतना आप ये कह दीजिए कि टफ बना दिया गया है, या उनके जो हालात हैं, मामूलात ज़िंदगी हैं, उन पर इतनी सख्ती है कि चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से वो बीमार हो जाएं और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि जब हमारी फुफ्फो मिली हैं सरकारी अस्पताल के अंदर हमारे वालिद से, तो उनकी आंख के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई थी। मीन इमरान खान साहब की आंख पर गालिबन कोई आई पैच लगा हुआ था, और वो कह रहे थे कि उनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा था, और उसके साथ साथ ज़्यादा रहता है, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि हमसे हमारे वालिद की बात नहीं करवाई जाती, कई दफ़ा सुबह 5 बजे बरतानिया के वक्त के मुताबिक फ़ोन कर दिया जाता है, और कहा जाता है थोड़ी देर में बात करवाएंगे, फिर इंतज़ार करवाया जाता है, और कभी भी बात नहीं करवाई जाती, और हमारे वालिद को आइसोलेशन में रखा हुआ है। खुल के उन्होंने बातें की हैं। इसके साथ ही साथ द टाइम्स और संडे टाइम्स ने बहुत ही एक तगड़ा एडिटोरियल जो है वो इमरान खान साहब की जो प्रोसिक्यूशन हो रही है उस पर लिखा है। उन्होंने खुले अंदाज में, खबर नहीं है, एडिटोरियल है, जिसका मतलब है कि जो उनका एडिटोरियल बोर्ड है वो अब ये समझता है कि इमरान खान को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, इमरान खान के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनके इंसानी हकूक जो है उनको सल्ब किया जा रहा है। आगे चलते हैं, अगली खबर ये है कि अमीर, साबिक अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने जो सबको पहले से पता था उसके ऊपर से एक दफा फिर पर्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ को कहा था कि इमरान खान की हुकूमत ना गिराएं, लेकिन शहबाज शरीफ ने आगे से कहा कि इमरान खान को लोग भूल जाएंगे, ये थोड़ी देर होगी और आप देखेंगे इमरान खान को लोग भूल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने में जनरल बाजवा की सपोर्ट हासिल थी, जनरल बाजवा ने अराकीन असेंबली को फोन कर करके वोट देने का खुद कहा, लेकिन जनरल बाजवा इस कदर गलीज और झूठे थे, हैं अभी भी, कि वो मुंह पर मुकर जाते थे कि मैं ये काम कर रहा हूं। मैंने आपको एक अहवाल बताया था कि एक मीटिंग में उन्होंने कलमे की कस्में खाई, कुरान उठाया, जबकि हम सभी को पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। ना वो अपनी यूनिफॉर्म का ख्याल करते थे, ना अपने ओहदे का ख्याल करते थे, बस झूठ बोलते थे कि बगैर सोचे बोलते थे। आप याद कीजिए कि बेगम के साथ फ्रांस में बैठे थे, एक शख्स ने आके उन्हें गंदी गालियां दी और वो मुकर गए कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है। बस यही करते थे, वो हर चीज में मुकर जाते थे। इससे पहले मौलाना फजल रहमान उनका ये सारा, उनको आईना दिखा चुके, या उनका ये सारी की सारी जो गेम थी उसके ऊपर से पर्दा उठा चुके हुए हैं कि उन्होंने किस कदर ये गंदा किरदार अदा किया था। अब साबिक अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक साहब जो है, उन्होंने भी खुलकर बता दिया कि जनरल बाजवा खुद फोन करके डिफरेंट MNAs को जो है, या मेंबर पार्लियामेंट्स को उन्होंने जाहिर है धमकाया होगा या खरीदा होगा कि आप वोट दें इमरान खान के खिलाफ और उनकी हुकूमत को गिराएं। उसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है पंजाब असेंबली के अंदर, जिसने मुझे हैरान कर दिया है। हैरान इसलिए किया है कि अब पंजाब असेंबली की जो अपनी कायमा या इस्तेहकाक कमेटी है पंजाब असेंबली के अंदर, वो आजकल ब्रॉडकास्ट करते हैं अपनी कार्रवाई को और डिफरेंट सरकारी अफसरान को बुलाते हैं। सरकारी अफसरान खुलकर आके वहां पर कहते हैं कि किस तरीके से करप्शन हो रही है। हाल ही में आपको ये बताएं कि जो CCD के हेड हैं इस वक्त, उनको और जो इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हाल ही में सरकारी अफसरान के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सुहेल जफर चट्ठा जो CCD को भी हेड करते हैं और एंटी करप्शन को भी हेड करते हैं पंजाब में, वो थे। और उसके साथ साथ इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान। जाहिद जमान साहब ने यह कहा सरकारी अफसरान को कि पहले तो मैंने एंटी करप्शन को रोक रखा था, मैं दरमियान में था, मैं कार्रवाई नहीं करने देता था, लेकिन अब लोग खुलेआम करप्शन कर रहे हैं, खुलेआम लोग रिश्वत लेने और देने की बातें कर रहे हैं, इसलिए अब चीफ मिनिस्टर ने यह फैसला किया है कि एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट जो है वो भरपूर कार्रवाई करेगा और मेरी इजाजत के बगैर भी अब वो कार्रवाई कर सकेंगे। मतलब ये कि चीफ सेक्रेटरी का पता काट दिया गया है बीच में से, सुहेल जफर चट्ठा को डायरेक्ट हक दे दिया है या इख्तियारात दे दिए हैं मरियम नवाज ने कि वो डायरेक्ट कार्रवाई करें। अब करप्शन तो आपको पता है शरीफ खानदान का कौमी खेल है, करप्शन से उन्हें मामला नहीं है। जो मौजूदा जाहिद जमान है उनके बारे में ये ओपिनियन है कि वो मिलिट्री जर्नल्स की तरफ से लगाए गए हैं, इसलिए मरियम नवाज जो हैं वो उनको तो तब्दील नहीं कर सकी अभी तक, इसलिए वो अपना एक छोटा सा चीफ सेक्रेटरी अपना बनाने की कोशिश कर रही हैं। जो सुहेल जफर चट्ठा है उन्होंने उन्हें चीफ सेक्रेटरी से बाला ही बाला जाकर एक ब्रीफिंग दी और अपने लिए मामलात वहां से अप्रूव करवा लिए और अब वो डायरेक्टली चीफ सेक्रेटरी की इजाजत के बगैर काम करेंगे। एंटी करप्शन का जो मामला होगा वो अफसरान पर डायरेक्ट केसेस बनाएंगे। अब आगे चलते हैं, एक हेयरिंग हुई इस्तेहकाक कमेटी में जहां पर पीटीआई के गालिबन ये एमपीए हैं, फरुख जावेद मून, ये हमारे दोस्त जो हैं ये अक्सर बेचारे इनकी किस्मत खराब है, जब भी कभी एहतजाज हो सबसे पहले ये पढ़े जाते हैं, पता नहीं इनके साथ क्या होता है, ये घर से निकलते हैं पुलिस पकड़ लेती है, मतलब सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का जो भी बंदा पकड़ा जाता है उनमें पहले नामों में ये हमारे दोस्त जो फरख जावेद मून साहब हैं, इनका नाम इसलिए मुझे याद रह जाता है कि इनके नाम के साथ माँ बाप ने मून लगाया हुआ है, चांद है अम्मा के, हैं भी चांद जैसे वैसे हमारे भाई, लेकिन पुलिस वाले सबसे पहले इन्हें धर लेते हैं। अभी ये इस्तेहकाक कमेटी में गए और इन्होंने कहा कि एक्साइज के एक डिप्टी डायरेक्टर नदीम, ये उनके पास एक फलाही काम के लिए गए जो अवाम के लिए फलाही काम था, पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में कोई काम था, रफाई काम होगा या रफाए आमा का काम होगा, वो करवाने के लिए गए और उन्होंने इनसे रिश्वत मांगी और रिश्वत में उन्होंने कहा कि मैं तो खुद यहां रिश्वत दे के बैठा हुआ हूं, आप रिश्वत देंगे तो काम करूंगा वरना मैं काम नहीं करूंगा। ये डिप्टी डायरेक्टर नदीम जो एक्साइज के हैं उन्होंने कहा, और ये कौन कह रहा है, ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमपीए फरख जावेद मून कह रहे हैं। आगे से वो जो नदीम साहब हैं वो भी टकरा गए उनको, उन्होंने कहा कि आप तो आए थे डीवीआरएस का लाइसेंस मेरे से रिन्यू करवाने, आप पहले तो मुझे बताएं कि ये कौन सा रफाए आमा का काम है, ये डीवीआरएस क्या होता है। ये डीवीआरएस जितने भी ये ऑटोमोबाइल्स के डीलर्स होते हैं, ये गाड़ियां शाड़ियां बेचने वाले जो डीलर्स हैं, इनका लाइसेंस होता है डीलर्स का अपना लाइसेंस, ताकि वो एक्साइज के बहुत सारे काम अपनी डीलरशिप पर ही कर सकें और बंदे को एक्साइज के दफ्तर ना जाना पड़े। तो वो जो डीवीआरएस का लाइसेंस है वो खालिस्तन एक कारोबारी काम है, जाहिर है अवामी फलाह का कोई काम नहीं है। तो जो नदीम साहब हैं वो इनको टकरा गए, उन्होंने कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप अवामी फलाह के काम के लिए आए थे, आप पहले जरा बताएं ना कि कौन सा अवामी फलाह का काम था। यहां पर एमपीए साहब के पास जवाब नहीं था।
2: और मुफादे आमा के काम पर मुझसे फीस के साथ अजाफी रकम मांगी गई। सर कौन सा मुफादे आमा का काम था, मुझे जरा ये एक्सप्लेन कर दिया जाए कि ये मुझे डायरेक्ट कह रहे हैं कि मैं तो पैसे देके इधर आया हूं सीट पे और चीज का मैं हलत दे रहा हूँ कि 50,000 इन्होंने मेरे सामने बंदे को बुलाया जाकर उसे दे के आओ, अगर मैं नहीं दूंगा तो वो सीट पर अगले ट्रांसफर कर देंगे।
3: ये अपनी नौयत की एक अलग से प्रिविलेज मोशन है, आज तक नहीं देखा सुना कि इस तरह से किसी अफसर ने बराह रास्त किसी नुमाइंदे से ये बात कही हो कि मैं पैसे दे के यहाँ पे अपॉइंट हुआ हूँ और मैंने आगे भत्ता देना है और मैंने आगे वो पैसे भेजने
0: हैं। तो दोनों पार्टीज की जो इंटेग्रिटी की साइड है वो गौर कीजिए कि वो जो अफसर है जो डिप्टी डायरेक्टर है वो सीधा कहता है रिश्वत देकर लगा हूं मुझे रिश्वत दो, एमपीए आकर इस्तेहकाक कमेटी में अपना डाल देता है केस। इस्तेहकाक कमेटी में आके जब डिप्टी डायरेक्टर अपीयर होता है तो वहां भी एमपीए अपनी जो स्टेटमेंट पढ़ता है उसमें बताता नहीं कि मैं जाती काम से गया था, वो कहते हैं कि मैं रफाए आमा के काम के लिए गया था। तो डिप्टी डायरेक्टर कहता है कि रफाए आमा का फिर काम बताएं कौन सा था, یہ نہیں بتاتے کہ ڈی وی آر ایس کا جو لائسنس اپنے کاروبار کا تھا یا اپنے کسی دوست کے کاروبار کا وہ رینیو کروانے گئے تھے. تو یہ حال چل رہا ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا آپ سوچئے. انٹیگریٹی جو ان آفیسز میں ہونی چاہیے وہ ناپید ہو چکی ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.
4: آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 3321-2984, ای میل ریڈیو سنائپلائی

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामेईन और नाज़रीन, रेडियो हमवतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश व खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ता रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूआत सियासी, समाजी और मालूमाती नौयत के होंगे और इन सब मौजूआत पर बातचीत करने के लिए, तबसरा करने के लिए

0: हमारे साथ टेलीफोन पर जनाब मलिक नसर मलिक साहब मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ जाएं, कोपेनहेगन में पिछले दो हफ्तों से बहुत ही छोटी छोटी खबरें जो हैं, मालूमाती खबरें हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कल दो बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन हुई कोपेनहेगन में। एक जो मुजाहरा था वो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ था और उसका नाम था रीमाइग्रेशन। इसका मकसद यह है कि जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं जिनका ताल्लुक तीसरी दुनिया से है, ग्लोबल साउथ से है, उनको यहाँ से निकाला जाए, ख्वा वो रेफ्यूजी हैं ख्वा वो माइग्रेंट हैं। और ये जैसे आपको पता है, ये डेनिश हुकूमत जो है, डेनिश पीपल पार्टी के सरबराह मार्टिन मेसरश्मिट ने ये जो है शुरू किया था काम। लेकिन जो कल की डिमॉन्स्ट्रेशन थी उसमें बहुत से हुलीगन्स और मुसलमानों और गैर मुल्कियों से नफरत करने वाले नौजवान लोग, काले कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, कुछ अपने चेहरों को छुपाया हुआ था और कुछ उसमें जो है वो नाजी सलूट भी कर रहे थे। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन को जो है रोकने के लिए या उसके ख़िलाफ़ एक और डिमॉन्स्ट्रेशन भी की जो एंटी रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो जिसका बंदोबस्त किया था, और उसी जगह पे जहाँ पे ये दूसरे लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, पुलिस बहुत भारी उसमें थी और उन्होंने कुछ तस्वीर से ही पता चलता है कि उन्होंने जो मुसलमानों गैर मुल्कियों के हक़ में जो डिमॉन्स्ट्रेशन थी, जो रीमिग्रेशन के ख़िलाफ़ डिमॉन्स्ट्रेशन थी, उस पर कुछ लाठी वगैरह भी बरसाई, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेशन करते रहे। अब अजीब सी बात यह है कि डेनमार्क में हमारे वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर बड़े अरसे से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार करते रहे हैं। मॉर्टन मेसरश्मिट रोज़ाना अपनी जो है फेसबुक पे लिखते हैं, लेकिन कभी भी किसी वज़ीर ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अगर कोई मुसलमान कोई गलत बात करता है या कोई और बहस आती है तो वो हमेशा गैर मुल्कियों को, मुसलमानों को लताड़ने में लग जाते हैं। दूसरी खबर यह है कि गैर मुल्कियों की के हालात को बेहतर करने के लिए आज से 50-60 साल पहले काम शुरू हुआ था, जिसमें हमारे दोस्त उले हामर जो हैं, जो मेलन फॉल की सामिर में भी काम करते हैं, उन्होंने एक नई किताब लिखी है जो ये कहती है कि बजाय गैर मुल्कियों को गैर मुल्की कहा जाए, उनको को सिटीज़न कहा जाए, कि वो हमारे मुल्क में रहते हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, अक्सर ज़ुबान बोलते हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं। तो हम वहाँ पे गए थे तो बहुत अच्छा रहा वो किताब जो है, उसमें मैंने भी एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है, ख़ास तौर पे जो सियासतदानों का जो कंट्रीब्यूशन है मुल्क में नफरत बढ़ाने के लिए उसके बारे में। तो ये दो ख़बरें जो हैं बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा चंद एक और ख़बरें जो हम आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। एक तो ये है कि बिल गेट्स जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था, अब उन्होंने एक बात की है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बहुत ख़तरनाक है और इससे जो है हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए, और क्योंकि हो सकता है कि ये इंसानों को जो है रिप्लेस कर दे। यही बात एक बहुत मशहूर साइंसदान जो थे उन्होंने भी ये बात की थी। वाकई अब अगर बिल गेट्स ये कह रहे हैं तो फिर यह है कि साइंसदानों को और हुकूमतों को ये सोचना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से अच्छी तरह यूज़ किया जाए, ना कि वो हमें यूज़ करें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से एक और ख़बर ये है कि मार्केट में एक ऐसे ग्लासेस आए हैं जिनमें कैमरा लगा हुआ है और नौजवान लोग उसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने दोस्तों की फैमिली की ऐसी वीडियो बना के इंटरनेट पर डाल देते हैं जो नाज़ेबा होती है। और अब जो है किच डेनिश हुकूमत ये सोच रही है कि इस पर ख़ास तौर पर स्कूलों में इस पर जो है बैन लगाया जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको ये समझ नहीं आती कि जब वो कोई चीज़ फेसबुक पर डालते हैं उससे दूसरे शख्स का जो है कितना ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होता है और उसको कितने प्रॉब्लम पड़ जाते हैं। और दूसरे, जैसे आपको पता है कि नॉर्वे के हरदलजीज़ बादशाह किंग हारल्ड जो हैं वो 89 साल की उम्र में ओस्लो में जो है वो पिछले हफ्ते वफात पा गए, उनके जो उनकी फौजगी के बाद उनके जो बेटे हैं क्राउन प्रिंस हाकन, उन्होंने नॉर्वे की जो है बादशाहत संभाल ली है। और पिछले हफ्ते एक और शख्सियत दुनिया से चली गई है, वो बहुत मशहूर कंट्री सिंगर डॉली पार्टन, जिसको सब आप लोग जानते हैं, जो जिन्होंने उनके बहुत मशहूर सॉन्ग जोलीन, 9 to 5 एंड आई विल ऑलवेज लव यू, वो हमने 70s-80s में सुना था, उन सॉन्ग को डांस भी किया था उन सॉन्ग्स पे, तो वो भी जो है फौत हो गई हैं। और साथ में बोस्नियन सर्ब जनरल रत्को मलादिक, जिन्होंने बोस्निया में जेनोसाइड किया था बोस्निया मुसलमानों का, उनको बूचर ऑफ बोस्निया भी कहा जाता था, वो भी जो है काफ़ी वो जेल में थे क्योंकि हेग में उन पर मुकदमा हुआ था जेनोसाइड का, उनको गिरफ्तार किया गया था, तो अब वो जो है वो भी जो है इस दुनिया से चले गए हैं। और सर्बिया ने उनको कोई उनकी तदफीन में कोई हिस्सा नहीं लिया, उनको जो है बिल्कुल अलग थे, उनकी तदफीन हुई है। और एक और ख़बर जिस पे जो काफ़ी बहस हो रही है डेनमार्क में, वो ये है कि कोपेनहेगन में जो मैरिड कपल हैं, कोपेनहेगन के इलाके में रहते हैं, उनमें डाइवोर्स का रिस्क बहुत बढ़ गया है। पहले जो था वो 0.9% था, अब वो 1.6% हो गया। अब इसकी वजह कुछ तो लोग ये कहते हैं कि कपल जो हैं वो दोनों काम करते हैं, अपनी अपनी उनकी लाइफस्टाइल होता है, तो उसकी वजह से उनमें काफ़ी जो है प्रॉब्लम पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से डाइवोर्स का रेट ख़ास तौर पे जो कोपेनहेगन के इलाके में लोग रहते हैं उनमें काफ़ी बढ़ गया है। डिजिटल फ्रॉड है डेनमार्क में, उसके बारे में भी रिपोर्ट आई है कि 2023 में एक सर्वे के मुताबिक 2800 केसेस ऐसे आए हैं जिसमें लोगों ने इंटरनेट पर जाके लोगों से फ्रॉड करने की कोशिश की है, और वो एक साल के अंदर अंदर उसकी तादाद तकरीबन 7,800 के करीब हो गई है। इसका मकसद यह है कि तकरीबन 2,75,000 लोग जो हैं डेनमार्क में, उनको डिजिटल फ्रॉड लास्ट ईयर का सामना करना पड़ा है। तो हमारी ये गुजारिश होगी कि वो लोग जो इंटरनेट पे जाके चीज़ें ख़रीदते हैं या दवाइयाँ ख़रीदते हैं, उनको बहुत सोचना चाहिए कि इंटरनेट पे बहुत ही फ्रॉड हो रहा है। और उसमें तो कहीं भी ऐसा है कि बहुत मशहूर डॉक्टर्स के नाम से ऐसी वीडियो बनाई जा रही हैं जिसमें मुख्तलिफ जाली दवाइयाँ बेची जा रही हैं, उस पर भी प्लीज़ आप बहुत ख्याल रखें कि इंटरनेट पे जो ये कुछ हो रहा है इसमें इसको आप बहुत सोच समझ के जो है वो उसको इस्तेमाल करें। एक और चीज़ जो है बहुत तश्वीशनाक है वो ये है कि बच्चों में जो है तशद्दुद का कहत बढ़ गया है। बच्चे पहले तो एक दूसरे से बात करते थे, अब वो मार कुटाई जो है वो भी शुरू हो गई है, और ख़ास तौर पे 15 साल की उम्र से छोटे बच्चे। तो वो लोग जो हमारा प्रोग्राम सुनते हैं देखते हैं, हमारी उनसे ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, छोटे बच्चे हैं, कि वो कहाँ जाते हैं, किन के साथ मिलते हैं, उनका जो है तौर तरीका क्या है, ताकि वो इन चीज़ों में वो नहीं पड़े। हेल्थ के हवाले से छोटी छोटी खबरें हम आपको दे देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा है, फेक डॉक्टर्स यूट्यूब पे बहुत से लोग जो है वो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तकरीबन 1,00,000 के करीब वीडियो हैं यूट्यूब के ऊपर। तो प्लीज़ जब आप यूट्यूब पे जाके कोई दवाई वगैरह ख़रीदें, इसका आप प्लीज़ ख्याल करें, क्योंकि आपको जाली दवाइयाँ भी जो है वो खरीदेंगे आप, और आपके पैसे भी जो है वो ज़ाया चले जाएंगे। डॉक्टर्स जो हैं डेनमार्क के, उन्होंने एक सर्वे किया है कि हमारे उनके जो पेशेंट हैं वो कई दफ़ा डॉक्टर्स को से जो बात करते हैं तो उन पे वो भरोसा नहीं करते, हालांकि डेनमार्क का महकमा सेहत जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल है और डॉक्टर बहुत सोच समझ के दवाइयाँ देते हैं। लेकिन अब ये जो डिस्टेंस बढ़ रहा है डॉक्टर्स और उनके जो मरीज़ हैं, ये भी एक तश्वीशनाक बात है। इसी तरह और भी जो आर्टिफिशियल मेडिसिन है उसमें काफ़ी एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो लोग जो जिनके बाल गिर जाते हैं तो उसके लिए काफ़ी जो है एडवर्टाइज आती हैं, तो उसके बारे में भी वो लोग, यंग लोग ख़ास तौर पे, उनको महकमा सेहत ने जो है इसका इसके बारे में तश्वीश का इजहार किया है और कहा है कि आप गैर ममालिक में जाके ये जो है अपने बालों का कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं कराएं, क्योंकि इससे नुकसान भी हो सकता है। और आखिरी ख़बर सेहत के हवाले से ये है कि जब आप कोई सुपरमार्केट से खाने ख़रीदते हैं तो जो प्रोसेस खाने हैं, जो डब्बों वाले खाने हैं जिसमें, उससे जो है परहेज़ करें, क्योंकि डब्बे वाले खाने जो हैं वो फ्रेश खाने के मुकाबले में ना तो उसमें प्रोटीन होती है, ना ही उसमें कोई ऐसी आपकी जिस्म की बेहतरी के लिए कोई चीज़ है। तो ये चंद छोटी छोटी खबरें थी जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। अब हम चलते हैं जनाब नसर मलिक साहब की तरफ। नसर साहब, सलाम अलैकुम, क्या हाल आपका? आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
1: जी बिल्कुल, अच्छा, मेरी भी आवाज़ आ रही होगी।
0: जी जी, अब आ रही है मेरे आपकी आवाज़। तो थोड़ा सा डेनमार्क के बारे में थोड़ी सी बात, खबरों पे बात कर लें।
1: जी
0: आपको जैसे पता है कि डेनमार्क की हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है यूरोपियन ममालिक को इकट्ठा करने की, ताकि उनके साथ मिल के जो है तीसरी दुनिया में एक सेंटर बनाया जाए, जहाँ से यहाँ पे लोगों को यहाँ से जो है खारिज भेज के वहाँ पे रखा जाए। तो अभी दो दिन पहले 5 ममालिक के लोग आए थे जिन्होंने इस बात पे आमादगी जाहिर की है कि वो डेनमार्क की इस ख्वाहिश और इस तजवीज़ की हमायत करते हैं। तो उसमें जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और ग्रीकलैंड भी शामिल हैं। इसके बारे में आपका, ये डेनमार्क जो है ये इस चीज़ को बनवा के ही छोड़ेगा, वो उसके पीछे बहुत पड़े हुए हैं?
1: आसार तो यही दिखाई देते हैं कि डेनमार्क अपने इस मौक़ पर दस्तूर कायम ही नहीं, बल्कि इसकी मजीद इसमें वसत लाने के लिए वो यूरोपीय यूनियन के दूसरे ममालिक को अमली तौर पर अपने साथ में लाना चाहता है।
0: जी,
1: ताकि यहाँ वो लोग जिन्हें मुल्क बदर किया जाना है और वो मुल्क बदरी के मतवक्को अफराद के मराकज में बैठे हुए हैं, उनको किसी ऐसी जगह पर भेजा जाए, ऐसे तीसरे मुल्क में भेजा जाए कि वो वहाँ पर अपना मुस्तकबिल जो है वो देख लीजिए क्या है। वहाँ से उनको उनके मुल्क में वापस भेजा जाता है, जा सकता है या नहीं, इसका मामला बाद में देखा जाएगा।
0: अच्छा।
1: फिलहाल आसार ये बताते हैं कि ये 5 ममालिक जिनका आपने जिक्र किया पिछले हफ्ते यहाँ कोपेनहेगन में उन्होंने अपनी डेनिश आमपदा वजीर जो है उससे मुलाकात की है और इस मसले को पाया तकनीक तक पहुँचाने के लिए इसके हाल को इकदाम के अमली ऐलान किया है। कहा यह जा रहा है कि डेनमार्क शायद अगले माह पहली खेप के तौर पर 100 के करीब अफराद को किसी एक अफ्रीकी ममालिक में या तीसरी दुनिया के किसी और मुल्क में भेजने के लिए तैयारी कर रहा है।
0: जी।
1: वो कौन सा मुल्क होगा इसका अभी कुछ इजहार नहीं किया गया खुलकर, लेकिन आपको पता है कि रवांडा का जिक्र इस मामले में बहुत सामने आता रहा है। तो एक तो क्या यह है कि शायद ये रवांडा में जाए, लेकिन ये किसी और मुल्क में भी भेजे जा सकते हैं।
0: अल्बानिया का नाम भी लिया जा रहा है,
1: अल्बानिया का नाम भी लिया जा रहा है, बल्कि वहाँ तो एक जेल की तैयारी भी की जा चुकी है।
0: हाँ, एग्जैक्टली।
1: और दूसरा, आपने बिल्कुल ये बजा कहा कि ये 5 ममालिक जो यहाँ इकट्ठे हुए डेनमार्क के साथ इस मामले पर मुलाकात के लिए, तो इसको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि ये 5 ममालिक है। इस वक्त डेनमार्क गैर मुल्कियों मुखालिफ अपनी सख्त तरीन पॉलिसियों की वजह से पूरे यूरोपीय यूनियन में सर फहरिस्त है और देश कई एक यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अपने यहाँ गैर मुल्कियों के मुतल्लिक और खास तौर पर मुसलमानों के बारे में पॉलिसियाँ सख्त बनाने के लिए डेनमार्क को एक संगमिल की हैसियत से देख रहे हैं।
0: अच्छा नसर साहब, एक बात मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको याद होगा पहले वो जिन लोगों को भेजना चाहते थे वो लोग थे जो यहाँ पे असालम के लिए आए, उन्होंने कोई जुर्म किया, लेकिन अब जो ये नया मॉडल है उसमें तो उन लोगों को भी भेजा वापस भेजना चाहते हैं जो यहाँ पे माइग्रेशन, उसको तो वो ऊल ऑली माइग्रेशन कहते हैं, लेकिन वो जो लोग यहाँ पे काम ढूंढने के लिए आए हैं और उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, अब उनको भी ये उस मॉडल में उसको उनको जो है वापस भेजना चाहते हैं और उसको एक यूरोपियन प्रोजेक्ट के तौर पे पेश किया जा रहा है।
1: آپ نے بالکل بجا کہا یہ شکل بھی شامل ہے, لیکن اس کے لیے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ یہ لوگ جو یہاں پر کام کرنے کی غرض سے آئے لیکن کچھ کرتے نہیں ہیں بلکہ سوشل سیکورٹی پر انحصار کرتے ہیں, ان سے کس طرح خلاصی حاصل کی جائے. اور اگر یہ ہو گیا تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہوگا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ سے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں فارجی ویزوں پہ یا مشکل ویزوں کو تو بعد میں وہ مشکل ہوتے ہیں, یہ ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. ان کے لیے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا, کیا سرائیاں کرنا اچھا نہیں ہے, لیکن مستقبل کوئی پائیدار دکھائی نہیں دیتا ایسے لوگوں کے لیے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈنمارک کی یہ متصبانہ اور خالصتاً امیگرینٹ کے خلاف پالیسیاں جو ہیں یہ اس حد تک مقبول ہو گئی ہیں کہ ڈنمارک کو ایک ایسا ملک اب کہا جا رہا ہے جو پوری یورپ کی رہنمائی کر رہا ہے کہ وہ اپنے ہاں غیر ملکیوں سے اور اپنے ہاں آنے والے جو سیاسی طلبگار وغیرہ ہوتے ہیں ان سے کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جرمنی کی ایک ریاست میں آج انتخابات ہو رہے ہیں اور وہاں اس ڈی آئی ایف کا پارٹی کا جو سربراہ ہے اس نے کھل کر کر ڈینش ٹیلی ویژن پر کہا ہے کہ اس نے یہ جو سخت ترین پالیسیاں رکھی ہیں غیر ملکیوں کے متعلق اور خاص طور پر مسلمانوں کے متعلق, کہ مسلمان بچوں کو اسکولوں میں الگ سے پڑھایا جائے گا, ان کو جرمن بچوں کے ساتھ نہیں بٹھایا جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے ڈنمارک سے حاصل کیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ڈنمارک جو ہے جو کسی زمانے میں اور اب بھی کسی حد تک انسانیت کا نمبردار اپنے آپ کو قرار دیتا تھا, وہ یک دم یہ رخ کیوں بدل گیا ہے اور اس کے اثرات خود یہاں ڈنمارک میں رہنے والے ہم غیر ملکیوں اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے متعلق کیا نتائج پیدا کریں.
0: اچھا اچھا, ایک یہاں پہ میں چیز پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ جو پانچ ملک یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کو ایک یورپین پروجیکٹ کیا, لیکن فرانس کے صدر اور اسپین کے وزیر اعظم نے اس پروجیکٹ کی بہت سخت مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ یورپین ویلیو کے ساتھ ملتے ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دوسرے ممالک میں زبردستی بھیجیں. تو یہ پھر یورپین پروجیکٹ تو نہ ہوا, یہ تو ڈینش پروجیکٹ ہو گیا.
1: یہ اصل میں ڈینش پروجیکٹ ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو چند ایک ممالک ملتے جا رہے ہیں ان کی تعداد میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے یا جس طرح وہ بغیر شمولیت کیے ڈینش امیگرینٹ پالیسیوں کو سراہتے ہیں, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دو دن کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کی آواز جو ہے یہ اتنی مؤثر نہیں ہو سکتی جتنی کہ یہ باقی ممالک جو ہیں وہ مل کر کرتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ انتہائی دائیں بازو کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں اور خاص طور پر امیگرینٹس کے خلاف پالیسیاں جو رکھتی ہیں وہ کتنی مقبول ہوتی جا رہی ہیں. برطانیہ میں دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے, اور اسی طرح آپ اب جرمنی جو ہے اگر اس میں آج جو انتخابات ہو رہے ہیں ایک ریاست میں اگر یہ پارٹی جو ہے یہ جیت گئی تو اس کے پورے جرمنی پر کیا اثرات ہوں گے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے.
0: جی جی, جرمنی کی جو پالیسی ہے وہ تو اس سے تو واقف ہوں, وہ بہت ہی اینٹی مینورٹیز ہے. اس کے علاوہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پہ جرمنی نے بہت مدد کی ہے اسرائیل کی, تو وہ یہ جرمنی کی جو پالیسیز ہیں وہ تو بڑی ظاہر ہو گئی ہیں.
1: یہ جو نئی پارٹی آئی ہے جی اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ کم و بیش 42% ووٹ جو ہے
0: exactly ہاں جی بالکل,
1: اس نے تو خود کر اعلان کیا ہے کہ یہ یوکرین کے لیے جرمنی کے موقف کی حمایت نہیں کرتی اور روس کی خود کر حمایت کرتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہ وہی ریاست ہے جو کسی زمانے میں ایسٹ جرمنی یعنی مشرق جرمنی کہلاتی تھی اور یہ سرخوں کی اماجگاہ تھی.
0: جی جی جی,
1: یہاں کمیونسٹ پارٹی کی مرکز اقتدار تھی اور یہی باقی ماندہ لوگ جو ہیں اب وہ وہاں پر آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی خطرناک پیش رفت ہے جس پر نہ صرف جرمنی بذات خود بلکہ اس کے ارد گرد کی ریاستیں جو ہیں ممالک جو ہیں وہ بھی بڑے غور سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے.
0: جی متاثر تو وہ ایک دوسرے سیکھتے تو ہیں یہ چیزیں ایسی,
1: لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ڈنمارک میں اسے سرکاری طور پر تو نہیں لیکن غیر سرکاری طور پر مختلف سیاستدان جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی سیاسی पॉलिसियाँ जो हैं वो हम गैर मुल्की जो बरादरियाँ हैं उनको पाक साफ करने के लिए इनका होना ज़रूरी है।
0: अच्छा, आपको याद होगा कि हमारी वज़ीर आज़म इटली गई थी और वहाँ के इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो वेरी फार राइट पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि यूरोप जो है उसमें मुसलमान ममालिक से जो लोग आते हैं उनको नहीं आना चाहिए क्योंकि वो हमारे क्राइम्स करते हैं। उसके अलावा यूरोप है वो क्रिश्चियन हेरिटेज है, उसको हम बरकरार रखेंगे। लेकिन कल जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुई है जिसमें नाजी सलूट किए गए हैं और बड़े गंदी गंदी नारे लगाए गए हैं, उसके बारे में हमारी वज़ीर आज़म ने एक लफ्ज़ ना किसी और सियासतदान ने उसको कंडेम किया।
1: बिल्कुल आपकी बात बजा है और इस पर आपने दैनिक सियासतदानों की जो बात कर दी, हमारे अपने जो गैर मुल्क के पक्ष मंजर रखने वाले सियासतदान हैं उनके मुताबिक भी कुछ कही है। उन्होंने अपना मुंह क्यों बंद रखा हुआ है?
0: वो फेसबुक पे लिखते हैं लेकिन ओपनली नहीं कहते।
1: वो ओपनली क्यों नहीं कहते? उनको किस बात का खतरा है? यहाँ कानून का उनको तहफ़ हासिल है और अगर खुदा न खास्ता वो कोई ऐसी बात ना करे कानून के दायरे में रहते हुए, वो इस चीज को कंडम क्यों नहीं करते खुलेआम? वो खुद रब्ता करें जराए अबलाग से, टेलीविजन वालों से, DR2 से, DR से, TV2 से, किसी अखबार से, वो करके तो देखें।
0: बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए।
1: और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से जो ताल्लुक रखते हैं, खासतौर पर सोशल डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले इमिग्रेंट जो हैं, उनको तो चाहिए कि वो अपनी पार्टी की गर्दन रोके कि ये क्या हो रहा है।
0: हो सकता है कि वो पार्टी के अंदर चुपचाप कुछ कहते हों लेकिन अवामी तौर पर वो कुछ नहीं कहते हैं।
1: अवामी तौर पर ना कहना ये सबसे बड़ी मुनाफ़त है। आपने देखा है कि वेलसा पार्टी में क्या हुआ?
0: बिल्कुल,
1: जमीर की आवाज़ पर अमल करने वाले 5 लोगों ने वेलसा पार्टी के खिलाफ वोट देकर एक वेलसा पार्टी की सियासत में 100 साल सियासत में तहलका मचा दिया।
0: वो चाल आया उन पर बहुत ज़बरदस्त।
1: तो क्या हमारे जो जो जो इमिग्रेंट जो मेंबर हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, वो अपनी और अपने आल औलाद की और अपनी आने वाली नस्लों के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते?
0: जी, मैंने पिछले हफ्ते, आपको याद होगा, शानी आप नहीं थे, तो मैंने उनको बुलाया था, इरफान जिलानी साहब को, वो ब्रॉनबी में जो ब्रॉनबी बल्दिया में भी हैं और रीजन में भी हैं, और उनसे मैंने ये सवाल किया जो आप कह रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जी हम पब्लिकली जमात को नहीं कुछ कहते लेकिन यह है कि जब हम मीटिंग होती है हमारी तो हम वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। चलिए, अच्छा अब हम आते हैं कोपेनहेगन की तरफ। कोपेनहेगन में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। कोपेनहेगन के जो कमून है उसमें उन्होंने नई तजावीज़ पेश किए हैं। सबसे तो पहले तो यह है कि वो कुछ सड़कों को साइकिलों के लिए मखसूस करना चाहते हैं। उसके अलावा पार्किंग लाइसेंस कोपेनहेगन में वो बहुत महंगा करना चाहते हैं, और एक अजीब से उन्होंने इस चीज़ का मिलाया इन चीज़ों के साथ कि स्विमिंग हॉल में जो गैर मुल्की औरतें मर्दों के साथ नहीं स्विमिंग करना चाहती उस पे हम ख़ास तौर पे नज़र रखेंगे क्योंकि ये डेनिश वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है कि मर्द औरत अलग स्विमिंग करें। तो ये मुझे समझ नहीं, अच्छा साइकिलों के लिए तो ठीक है, या पार्किंग लाइसेंस की कीमतें बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो कारें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और ट्रैफिक में और पोल्यूशन वगैरह होती है, लेकिन उससे शरिया स्विमिंग उसको कहना क्या, उसको उसके साथ क्यों मिला दिया उन्होंने?
1: ये तो खैर एक बिल्कुल अलग मामला है और आप जानते हैं कि पिछले 20-25 साल से ये मामला जो है ये गाहे बगाहे सर उठा लेता है
0: जी,
1: और इसके कई वजूहात और तवीलें जो हैं वो पेश की जाती हैं। लेकिन जहाँ तक बाइसिकलों का ताल्लुक है तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ नौइयत के बाइसिकल जो हैं वो सड़कों पर आ गए, और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ बैटरी सिस्टम के जरिए आप वो उनको चलाते हैं और उनकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर/आवर से भी ज़्यादा हो जाती है।
0: हाँ, बहुत तेज चलाते हैं वैसे भी जी।
1: और ऐसे बाइसिकल जो हैं वो हादसों का शिकार बनते हैं क्योंकि उनको चलाने वाले ज़्यादातर नौजवान होते हैं और साथ वो अपना टेलीफोन भी रखते हैं बाज़ औक़ात और इधर उधर जानते भी रहते हैं, तो वो इन चीज़ों को बचाने के लिए, इन बातों का सद्दबाब करने के लिए कई एक आपने देखा पिछले दिनों पुलिस ने छापे मारकर वो जो स्पीड वाले बाइसिकल हैं वो कितने जब्त किए, और उसका जुर्माना भी बहुत ज्यादा है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो इस सिलसिले में वालदैन को भी ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे जब बाहर निकले तो, क्योंकि ये बाइसिकल तो हर जगह पार्क करते ये नजर आ जाते हैं।
0: जी जी जी।
1: आप अपने मोबाइल टेलीफोन से या अपने वॉच टेलीफोन से उनको स्टार्ट कर सकते हैं जी, और ताकि वो इस तरह से हरकतों से बाज रहे और मुकर्रा स्पीड की हद से ऊपर ना जाए।
0: आपने देखा होगा कि कई दफ़ा साइकिलिस्ट जो हैं वो साइकिल भी चला रहे हैं और SMS आईफोन पे SMS भी कर रहे होते हैं या कोई चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। तो जैसे भी आपने कहा है ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जब आपका एक्सीडेंट होगा तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप गिर पड़ेंगे, सर पे चोट आएगी। और तो हम अपने सामान्य नागरिक से कहेंगे जब आप साइकिल चलाएँ तो प्लीज़ साइकिल के ऊपर अपना जो है वो ख्याल रखें, ना कि
1: जी जी आपने जिक्र किया कि ये जो स्विमिंग हॉल हैं इनमें मुसलमान खवातीन जो हैं वो तो मर्दों के साथ और यानी ये को किस्म के हों, ज्वाइंट हों, तो ये मसला तो है लेकिन हाँ, और इसे ये कह देना कि जी ये शरीयत का असूल यहाँ पर कोई नाफज करना चाहते हैं ये नहीं है, ये एक सकाफती मसला है। बेशुमार दैनिक औरतें जो हैं वो मर्दों के साथ गुसल करना नहीं चाहती, स्विमिंग पूल में तैरना नहीं चाहती, तो उनको क्या किया जाएगा?
0: नसर भाई, मैं कई डेनिश खवातीन को जानता हूँ जो नहीं अपनी जिस्म को दूसरों के सामने जो है नहीं दिखाना चाहती हैं और ना ही वो स्विमिंग करना चाहती हैं, लेकिन इसको शरिया स्विमिंग कहना भी जो है ये मैं समझता हूँ ये बड़ा इस्लामोफोबिक है। लेकिन जैसे भी आपने कहा कोपेनहेगन कमून में काफ़ी चंद गैर मुल्की बैकग्राउंड के जो मेंबर भी हैं और दूसरे रेडिकल वेस्टरा की पार्टी की, लेकिन वहाँ पे उन्होंने शरिया उसको स्विमिंग को शरिया लॉ के तहत उसके बात की है, लेकिन जो कोपेनहेगन में इस्लामोफोबिया इतना बढ़ गया है अभी जो डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो रही है उसके बारे में एक लफ्ज भी जो है कोपेनहेगन कमून ने नहीं किया।
1: कोपेनहेगन कमून के एक वो इस पर आवाज़ उठाते हैं जी, और वो कोपेनहेगन बल्दिया की जो हफ्तावार मीटिंग होती
0: जी
1: उसमें उन्होंने बड़े हुए
0: जी काशिफ जी
1: जी काशिफ साहब
0: जी जी
1: हम जो है अच्छा। लेकिन एक चीज जो है वो सबको बचपूल आप या मैं और आप हमें सामने अपने
0: मुताल साहब आपकी आवाज़ छूट रही है, आप टेलीफोन के करीब बैठे हैं।
1: जी मैं ठीक हूँ।
0: अब ठीक है।
1: हमें जज्बाती नारों से परहेज करनी चाहिए
0: जी,
1: और बेट चुके जाते जो हैं वो उनका इजहार नहीं करना चाहिए। टू द पॉइंट और मौजू के अतबार से अगर बात करें तो बात सुनी भी जाती है और बात का वजन भी होता है, और यही तरीका जो है वो काशिफ ने अपना रखा है जी। अब देखना यह है कि एक फर्ज वाहिद की सजा वहाँ पर क्या असर दिखाती है, लेकिन मुझे ये जानकर खुशी जरूर होती है कि कोई तो है जो बोल रहा है।
0: एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, डेनमार्क के हवाले से एक और खबर है जो अजीब सी भी है और एक इतने डेवलप्ड कंट्री में 2026 के पहले हफ्ते में 6,000 लोग जो हैं डेनमार्क में उनके पास घर नहीं था, वो बेघर थे बिल्कुल और सड़कों पे सोते हैं इधर। तो ये ऐसे मसाइल जो हैं जो एक माशरे के मसाइल हैं, एक इतने डेवलप्ड कंट्री में 6,000 लोग जो हैं उनके पास घर नहीं है, वो उनके पास सोने के लिए जगह नहीं है, तो ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है।
1: ये तादाद जो है ये बदकिस्मती से हर साल थोड़ी सी बढ़ जाती है।
0: एग्जैक्टली।
1: लेकिन बाज मुहक्किन जो हैं वो इसमें इस अमर को सामने लाते हैं कि कई लोग जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के ममालिक के से तअल्लुक रखते हैं और वो यहाँ आ जाते हैं, उनके पास रहायश के लिए भी कोई जगह नहीं होती और उनको भी इसी सर्वे में शामिल कर लिया जाता है, और यूं तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। लेकिन असल मसला जो है वो यही है, आपने बिल्कुल वजह कहा कि यहाँ डेनमार्क में बेघर रहने वाले लोग जो हैं उनकी तादाद दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। नई जो बस्तियाँ बसाई जा रही हैं मुख्तलिफ मुल्क के इलाकों में, खासतौर पर कोपेनहेगन, ग्रेटर कोपेनहेगन के इलाके में, वहाँ वो इतनी महंगी होती हैं कि ये लोग वहाँ रह ही नहीं सकते। और फिर ये लोग जो हैं ये एक खास नफ्सियाती माहौल से तल्लक रखते हैं। इन्हें आप एक मरतबा घर मुहैया भी कर दें तो ये वहाँ चंद मारने के बाद फिर सड़क पर निकल आते हैं।
0: अच्छा,
1: और आपको याद है कि आज से कुछ तकरीबन एक साल पहले कोपनहेगन बंदिया ने तो ये भी रखा था कि इस तरह के दिखाई देने वाले बेघर लोगों को कोपनहेगन शहर से बदर कर दिया जाए।
0: अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग सोसाइटी में अपनी आवाज़ नहीं उठाते, कुछ लोग उठाते हैं, लेकिन जो उठाते हैं उनकी एक मैं मिसाल देता हूँ। आपको पता है आउटलैंडिश ग्रुप जो है उसके जो सिंगर थे इसाम बी, जिनका ताल्लुक मोरक्को से है, उनके ऊपर एक बहुत ही मीडिया कंपेन उनके ख़िलाफ़ चली, ख़ास तौर पे बैलेंस के मैगज़ीन, वो बार बार उनको इस्लामिस्ट कहते हैं। तो इसाम बी साहब ने कहा है कि भाई मेरे पे तनकीद करो, मेरे म्यूज़िक पे तनकीद करो, लेकिन मुझे इस्लामिस्ट कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मीडिया जो है वो बार बार ऐसे कैरेक्टर को उनको तबाह करने के लिए, अब वो बहस बड़ी चल रही है अखबारों में, तो क्या ये मीडिया जानबूझ के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को परेशान किया जाए?
1: ये मुश्तल करने की और आवाम नास को गलत मालूम मुहैया करने के करते हुए मखमसों में डालने की एक बदतरीन मिसाल है। जिस शख्स का आपने जिक्र किया है उसके मुताबिक मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, उसने सिर्फ इतना कहा था कि मुसलमान खवातीन जो स्कार्फ पहनती हैं, आप इसे यूं समझ लीजिए कि जैसे आपको याद होगा बाशी साहब, दूसरी जंग अजीम के दौरान जो जापानी फौजी होते थे वो सर पर इस तरह का एक रुमाल बांध रहे थे।
0: एग्जैक्टली, हाँ, और कामक, खासतौर पर वो पायलट जिनको कामक के पायलट भी कहते थे। हाँ,
1: बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और वो कहते हैं कि इसको आप यूं समझ लीजिए, इसको दीन से या किसी और जगह से निस्बतन नहीं दीजिए, ये एक कल्चर का हिस्सा है, एक सकाफत का हिस्सा है। अब उस बात को लेकर मुख्तलिफ सियासतदान और मुख्तलिफ खासतौर पर बैलेंस चीन अखबार जो है उसने तो वो धूल उड़ाई है, अल्लाह माफ करें जी, लेकिन वो अपने मौके पर बदस्तूर कायम है। और उनका कहना है कि बात करें तो दीन को बीच में मत लाएं, हमारे कल्चर को भी सामने रखें।
0: बिल्कुल। अच्छा, उनका एक गाना जो है वो,
1: अभी आपने जो बात की थी कि हमारी वजीर आजम मेटे फेडरेशन जो थी वो इटली गई थी और वहाँ उन्होंने इटली के वजीर आजम से मिलकर ये कहा कि यूरोप को खासतौर पर मुसलमानों से पाक रखना चाहिए क्योंकि ये हमारी मसीही इकदार जो है उसके खिलाफ है। अब सवाल ये है कि मसीही इकदार जो है वो क्या है?
0: एग्जैक्टली, वेरी ट्रू,
1: कभी किसी ने ये नहीं बताया।
0: वो कहते हैं जी हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं।
1: बिल्कुल करते हैं। मसीही इकदार तो ये कहती है कि अगर तुम्हें किसी ने एक गाल पर चांटा लगाया है तो दूसरा गाल उसके सामने पेश कर दो।
0: और हजरत ईसा तो कहते हैं आपका जो नेबर है उसका ख्याल रखें आप।
1: और अगर यही ईसाइत की मसीहियत के इकदार हैं तो फिर इनको खतरा किस बात से है?
0: नहीं जी, ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है जिसको वो मज़हब का रंग दे के लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं। अच्छा, अभी इसाम बी के खिलाफ उनका एक गाना है जो कि डेनमार्क की सॉन्ग बुक में शामिल किया गया पहली दफ़ा, अब वो उसके खिलाफ एक मुहिम चल रही है कि इसका वो गाना निकाल दिया जाए, जो क्योंकि ये गैर डेनिश गाना है, ये इसके डेनिश वैल्यू के खिलाफ, पता नहीं मुझे ये डेनिश वैल्यू जैसे आप कह रहे हैं क्या वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये मुहिम नसर साहब बहुत बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही।
1: इसके लिए बाकायदा जद्दोजहद की जरूरत है और राय आमा को हमवार करने के लिए हमारी जो ये जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, कभी कोई मीटिंग बुला रहा है, कभी कोई मीटिंग बुला रहा है, इन मैदानी सियासतदानों को अपने मुकामी सियासतदान जो है आपके बल्दिया के आपके इलाके से जो पार्लियामेंट का रुकन है, जो जो जो रीजन का रुकन है, उनको बुलाकर उनके सामने ये मसाइल उठाएं, इन पर बात करें और उनसे जवाब तलब करें कि ये सब कुछ क्या है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब हमारी अपनी पाकिस्तानी बिरादरी में 4, 5, 6, 7 तकरीबें नहीं होती और वहाँ पर हमारे अपने ही भाई बैठे होते हैं, कोई डांस नजर नहीं आता।
0: वो तो आपको पता है, वो तो फेसबुक पोस्ट के लिए की जाती है मीटिंग को,
1: और वो बातें भी करते हैं सिर्फ पाकिस्तानी सियासत के मुताबिक।
0: बिल्कुल। اب سچویشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ کوپنہیگن کمون میں ان کے ایک ممبر ہیں, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو چند سال پہلے انٹیگریشن کی کمیشن بنائے گئے تھے ہر بڑے شہر میں, اس کو بھی ختم کر دیا جائے کیونکہ یہ پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے, ان کو انٹیگریٹ کرنے کے بجائے ان کو ایکسپورٹ کر دیا جائے تھا. تو یہ سیاسی طور پہ بھی ایسی خبریں جو ہے نا وہ لوکل لیول پہ بھی ایسی باتیں شروع ہو گئی ہیں. ابھی
1: آپ نے بالکل بجا کہا, اور اس سارے دھندے میں, اس ساری منفی تحریک میں جو بڑا کردار دکھائی دیتا ہے ہمیں, وہ حکومتی پارٹی ہے, جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے. یہ چھوٹا سا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کو, کیونکہ اصل میں یہ اپنی ان چیزوں کو چھپانا چاہتے ہیں جو معاشرے پر بوجھ بن رہی ہے.
0: بالکل,
1: آپ نے دیکھا ہے جرمنی میں, ابھی پھر میں واپس چلتا ہوں, جرمنی میں یہ جو نئی پارٹی آئی ہے اور جو آج سابق مشرقی جرمنی میں جو انتخابات ہو رہے ہیں, انہوں نے صاف کہا ہے کہ سب سے پہلا قدم وہ یہ اٹھائیں گے کہ اپنے یہاں موجود یوکرین کے تمام لوگوں کو باہر بھیج دیا جائے گا, اور یوکرین کے جنوبی علاقوں میں جہاں امن قائم ہے, جہاں کچھ بھی نہیں ہے, وہ وہاں جائیں. ڈنمارک جو ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, اس نے یوکرین کے لیے ایک مثالی حد تک سب سے زیادہ مالی امداد مہیا کی ہے.
0: جی بالکل,
1: سب سے زیادہ فوجی مشاورت انہوں نے مہیا کی ہے, اور سب سے زیادہ فنڈ جو ہے وہ انہوں نے یوکرین کے لیے مختص کیے ہیں, اور وہ کہاں سے آئے ہیں, وہ میری آپ کی اور عوام کی جیبوں سے آئے.
0: Exactly,
1: اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ اب غیر ملکیوں کے لیے جو جو جو ادارے قائم تھے یا جو جو سوشل کنسلٹیشن کے دفتر قائم تھے ان کو بند کر رہے ہیں.
0: لیکن اس کے لیے ہماری وزیر اعظم یہ کہتی ہیں کہ ہم یوکرین کی اس لیے مدد کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں.
1: تمہارے بھائی ہوں گے.
0: اچھا, اب ڈنمارک کے حوالے سے ایک اور خبر پہ میں آپ کا تبصرہ لوں گا. شروع شروع میں جب یہ ڈنمارک اور گرین لینڈ کی بات چلی تو وہاں پہ ڈنمارک نے کئی نوجوان خواتین کے ساتھ زیادتی کی, ان کو جو ہے اسپرال لگا دیا تاکہ وہ بچے نہ پیدا کر سکیں, ان کو ڈینش کلچر کے لیے یہاں لائے. اب اتنے عرصے کے بعد جو ہے ڈینش حکومت نے معافی مانگی ہے, لیکن یہ بھی کہا ہے کہ وہ خواتین جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اب ہم ان کو جو ہے کمپنسیشن دینا چاہتے ہیں, اور یہ لیگلی جو ہے ان کا یہ حق ہے کہ وہ جو ہے پیسوں کے لیے اپلائی کریں. تو پہلے تو غلطی کی ہے, پھر معافی مانگی ہے, وہ کہتے ہیں چلے ہم ان کو جو ہے پیسے دے دیتے ہیں تاکہ یہ بات جو ہے رفع دفع ہو جائے.
1: یہ اتنی آسان بات جی میں نپٹا سکیں, لیکن جس ساتھ یہ زیادتی, ان کا اصل موقع کہ ڈنمارک کے اس اپل گرین لینڈ کی عورتیں عمل پیدائش اور یوں وہ آگے نہیں بڑھا سکی.
0: جی جی,
1: اور اس قدم کو وہ قتل عام سے قرار دیتی ہیں.
0: ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہتا ہوں, جینوسائڈ جو دو نئی رپورٹ آئی ہیں انہوں نے ان میں کہا ہے کہ یہ جینوسائڈ ہوا,
1: وہ جینوسائڈ کے بہت قریب پہنچ رہی ہیں. انہوں نے یہ تصدیق نہیں کیا, لیکن یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح کا. اب اگر اس بات پر تھنک کر دی جائے تو ڈنمارک جو ہے بڑا ثابت ہوگا. لیکن آپ نے بتایا کہ اب ایک وائرس ایپ آیا, سرکاری طور پر مملکت ڈنمارک تھی, اس کے بعد ایک موسم ہے اور ایک خواتین کو معاوضے کی رقم کی ادا کر دی ہے انہوں نے, سر ایچ کیا ڈنمارک کا جرمانہ تو کم سے کم تسلیم کر.
0: اچھا, گرین لینڈ کی حکومت نے جو یہ دو رپورٹس جو پریس ریلیز کی ہے, جس میں دو رپورٹس کے بارے میں ذکر کیا ہے, اس کے بارے میں وزیر اعظم جو ہیں ڈینش وزیر اعظم وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم ان رپورٹس کو گہری نظر سے پڑھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے.
1: ہاں جی, گہری نظر سے پڑھیں گے, بلکہ ان کو تو خود بھی لگا کر پڑھنا چاہیے, اس کے لیے ان کو کچھ مقدم بھی شاید ضروری ہو. جو آتا ہے وہ تو آج کے आपने कितने क्वार्टीन को 8 बना दिए, वो बचा नहीं पाया।
0: अच्छा, आपने जिक्र किया था यूक्रेन के रेफ्यूजीज़ के बारे में, जर्मनी ने जो जर्मनी में जो इंतखाब हो रहे हैं उसमें एक पार्टी ने कहा कि हम इनको निकाल देंगे, लेकिन डेनमार्क जो है वो भी अब ये कर रहा है कि यूक्रेनियन रेफ्यूजी जो यहाँ पे आए हैं, अभी तकरीबन 47,000 के करीब जो यूक्रेनियन डेनमार्क ने जो है उनको पना दिया है, अब वो कहा यह जा रहा है कि वो भी जो है यूक्रेन रेफ्यूजी के बारे में अपने कवानीन को सख्त कर देंगे, तो क्या आप ये समझते हैं कि अब वो जो पहले वाली पिज़्ज़ेराई थी उसको ख़त्म करके अब उनको भी तंग किया जाएगा?
1: उनको तंग तो इस तरह से नहीं किया जाएगा जैसा कि जर्मनी से आसार दिखाई देते हैं।
0: अच्छा,
1: लेकिन एक चीज़ जो है, यूक्रेन जो है वो अपनी फौजी अफराजी कुव्वत में कमी महसूस कर रहा है, और आपको याद है ये पहले भी ये असूल नाफिज़ किया गया था कि 18 साल से कम उम्र के यूक्रेनियन जो हैं वो अपने मुल्क को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको फौज में या किसी फौज से मुतल्लिका अदारों में जॉब करने के लिए रखा जाएगा,
0: लड़ाई के लिए इस्तेमाल करेंगे उनको,
1: लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब 18 साल के बच्चा ही तो है
0: जी,
1: उनको वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डेनमार्क का ये कहना कि वो इनको महदूद रखेगा, ये सुधाएं आ रही हैं। और आपने देखा है कि यूलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में और दही इलाकों में, ये यानी मुदाफाती इलाके जो हैं उनमें मौजूद यूक्रेन के जो महाजरीन हैं उनके बारे में मुकामी सियासतदार और मुकामी लोग जो हैं वो कोई अच्छी राय नहीं रखते, और उनका ये कहना है कि इनको किसी न किसी तरह से छेटा जाए और मुमकिन हो तो इनको वापस भेजा जाए।
0: अच्छा, आपने जिक्र किया था वेंसरा पार्टी में एक बगावत हो रही है, और अब जो ख़बर आई है उसमें ये बताया गया कि 18 वेंसरा पार्टी के जो पॉलिटिशियन हैं उनमें से 4 ने खुल के जो है अपने जो चेयरमैन हैं उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की है, तो क्या इससे वेंसरा पार्टी की पोजीशन जो पहले ही बहुत कमज़ोर है वो और भी कमज़ोर नहीं होगी?
1: बिल्कुल, आपने बया कहा, और ख़ास तौर पर माफ़ कीजिएगा, और ख़ास तौर पर अभी हालिया पिछले हफ्ते जो जो पार्लियामेंट ने कानून मंजूर किया है ज़मीनों पर काश्तकारी के तरीक़ाकार के मुताबिक,
0: जी जी,
1: उसको अपनाए जाने से बेशतर ज़मीन का हिस्सा जो है उस पर किसान काश्तकारी नहीं कर सकेंगे। तो अब किसानों ने जो नारा इख्तियार किया है वो ये है कि ना तो काश्तकारी होगी, ना खुराक पैदा होगी, और भूखे मरो। ये तीन अल्फाज जो हैं, ये तीन पहले नारे जो हैं ये इस वक्त किसानों के हलकों में गूंज रहे हैं, और आप तो जानते हैं कि वेंसरा पार्टी जो है इसका पस मंजर ही यही है कि ये जमींदारों की और किसानों की पार्टी है।
0: आपको पता है कि किसान इतने नाराज हैं कि वो तो कोपेनहेगन में उन्होंने ट्रैक्टर लेके मार्च भी करने पे चल गए।
1: आज भी एक कस्बे में कुछ 2000 के करीब ट्रैक्टर लेकर वो पहुंचे हुए हैं।
0: माय गॉड,
1: हाँ, और उन और वो अपने हॉर्न बजाते हुए यूं गुजर रहे हैं कि सड़कों के इर्द गिर्द की इमारतों की शीशे जो हैं वो काम रहे हैं, वो बकौल पंजाबी वो खड़क रहे हैं। तो इसलिए ये देखना जो है बहुत जरूरी है कि इस वक्त वेंसरा पार्टी के जो जिन्हें हम कहते हैं रायदहिंद जगान, खासतौर पर जरी इलाकों के रायदहिंद जगान जो हैं वो सख्त नाक मुंह चढ़ाए हुए हैं, इसलिए भी कि इस कानून पर जब अवामी राय ली गई और माहिरीन की राय ली गई, आपको तो पता है कि ये कानून ऐसे ही पास नहीं हो जाते, इस पर 3 मरतबा हियरिंग होती है पार्लियामेंट।
0: जी जी बिल्कुल,
1: तो दूसरी हियरिंग के दौरान तमाम माहरीन इस बात पर मुत्तफिक थे कि ये कानून किसी भी तरह से किसानों के हाथ में नहीं है, और जमीन को यूं बगैर काश के छोड़ देना ये नुकसानदेह है। लेकिन यूरोपीय यूनियन की जो सिफारिशात हैं वो इनको डेनमार्क को मजबूर किए जा रही हैं कि ये उन पर अमल करें, और इस तरह ये कहना बिल्कुल भी जा होगा कि बेशतर राय दहिंदगान जो हैं, जो मुस्तकिल राय दहिंदगान थे वेंसरा पार्टी के, वो भी अब इससे नाला दिखाई देते।
0: अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ही पैदा होता है कि एक तरफ तो पॉलिटिशियन लोगों से कहते हैं कि डेनिश सब्जियां खरीदो, डेनिश फल खरीदो, डेनमार्क के जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदो, चीज़ मिल्क वगैरह, लेकिन साथ में उनको तंग भी किया जा रहा है, तो ये दो चीज़ें जो हैं दूसरे के मुखालिफ हैं।
1: आपने बिल्कुल बजा कहा, जब ये चीज़ें मार्केट में डेनमार्क पैदा ही नहीं करेगा
0: एग्जैक्टली
1: जी, और या कम पैदा होंगी, तो ये जो डैनिश बनो और डैनिश खरीदो ये नारा पिघल जाएगा। कई एक तो माहरीन जो हैं वो ये कहते हैं कि खासतौर पर सब्जी मार्केट में और फलों की मार्केट में इतनी कमी हो जाएगी कि डेनमार्क बैरूनी ममालिक से अशिया मंगवाए बगैर गुजारा नहीं कर सके।
0: बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा नसर साहब, हमारे पास सात मिनट हैं, तो एक दो इंटरनेशनल ख़बरों पे मैं आपकी राय लूँगा। अभी जो है बिश्केक में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जो मुख्तलिफ ममालिक के मेंबर्स हैं, उसमें चाइना है, पाकिस्तान है, भारत है, और दूसरे जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के मेंबर, उनके मेंबर हैं, ईरान भी मेंबर है। वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अमेरिका को और इसराइल को जो है काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि ईरान पे जो सैंक्शन लगाई है अमेरिका ने उसको ख़त्म करो, और ये जो अटैक हो रहा है पलस्तीनियन पे इसको जो है बंद किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें चाइना भी है, दूसरे ममालिक भी हैं, तो क्या अभी ये ग्लोबल साउथ ऐसा ऐसा अपनी आवाज़ को ऊँचा कर रहा है?
1: आवाज़ को ऊंचा करे भले ढोल बजाए।
0: अच्छा
1: आपने देख लिया है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसें जो हैं उनका आखिर में अंजाम क्या होता है, महज करारदाद पेश कर देना और महज वहां पर बैठकर तकरीरें कर देना ये आज का तरीकाकार नहीं है। अगर चाहे अमेरिका चाहे तो वो एक मिनट में गाजा की सूरत हाल को बदल सकता है। इसराइल के आज ही जो कुछ हो रहा है वहाँ पर गाजा में, और खासतौर पर दरिया उर्दन के मगरबी किनारे पर जिस तरह वहाँ के यहूदी, बल्कि चहूनी मैं तो कहूँगा आबादकार जो हैं, वो हर किस्म के असले से मुसल्ला वहाँ पर जो मुकामी लोग हैं उनको उनके घरों से घसीट कर बाहर निकाल रहे हैं।
0: बिल्कुल मार मार मार मार के निकाल रहे हैं उनको,
1: तो मार मार कर निकाल रहे हैं। तो क्या ये दुनिया तबाशा देख रही है? ये सिर्फ सरहदें ये करारदादें पेश करने का वक्त है। अमली तौर पर कहीं कुछ नहीं करता। अभी आप फिक्र कर रहे थे कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर एक बहुत बड़ा बड़ा कामयाब मुआहदा किया है आपने किसी एक मुल्क पर हमले के दिफा में। सवाल ये पैदा होता है कि पहले वो इस्लामी फौज जो कायम की थी, जिसके एक पाकिस्तानी साबिक जनरल जो है वो कमांडर इन चीफ है,
0: और जिसके राहिल शरीफ साहब जिसके सदर थे
1: जी, और उसमें कई इस्लामी ममालिक शामिल हैं, वो किस बीमारी का इलाज है?
0: वो हुतीस के खिलाफ
1: होते हुए इसकी क्या जरूरत थी?
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल।
1: तो ये एक ईंट के ऊपर ईंट रख देना और कहना की जी दीवार बना रहे हैं, ये सब हवाई बातें।
0: बिल्कुल, चलिए हमारी तो ख्वाहिश है कि कुछ ना कुछ तो हो फलस्तीनियों के साथ जो है, बड़ा
1: जो चीनियों की जो बात अलग है, फलस्तीनी जो है उनको मरवा रहे हैं ये सारे लोग।
0: वेरी ट्रू। अच्छा अभी हमने बात की
1: नहीं, जी सऊदी अरब क्यों आवाज नहीं उठाता?
0: जी बिल्कुल,
1: क्यों इसराइल के सामने कंडीशन नहीं रखता कि तुम ये करो, सिर्फ ये कह देना कि हम तुमको तब तस्लीम करेंगे जब फलस्तीन का मसला हल होगा? नहीं,
0: बिल्कुल। अच्छा
1: ये डेनमार्क, आपको पता है कि परसों क्या हुआ? आपने शायद जिक्र किया हो खबरों में, छोटी खबरें जो आप पेश करते हैं मैं नहीं सुन पाया, कि डेनमार्क का जो बहुत बड़ा पेंशन खाता है उसके सामने लोगों ने मुजाहरा किया है कि वो इसराइल में सरमायाकारी बंद करें। आपको पता है आपकी पेंशन का कितना हिस्सा जो है वो इसराइल में तामीराती कामों पर, और खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ ये इसराइली गुंडे सहूनी गुंडे जो हैं ये आबादकारी के नाम पर अपनी बस्तियां बसा रहे हैं वहाँ इस्तेमाल होता है।
0: जी हाँ बिल्कुल, कई बड़ी बड़ी कंपनी है डेनमार्क में, उनकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे,
1: और डेनमार्क बजाते खुद असला वहाँ से खरीदता है।
0: एग्जैक्टली,
1: डेनमार्क की वजह से इसराइल की असला कंपनियाँ जो है वो चल रही
0: है। वेरी ट्रू। अच्छा थोड़ी सी बात हम सदर ट्रंप साहब की कर लें वो उनको ये शौक़ है कि वो हर दुनिया के हर हिस्से को कब्ज़ा करने के लिए वो जो है वो नारे लगाते हैं। अभी इन्होंने कहा जो कनाडा की जो लेक है, लेक ओंटारियो, उसको उन्होंने कहा कि लेक ओंटारियो का नाम अब फ्यूचर में लेक अमेरिका होगा, जैसे उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया। तो ये कनाडा के साथ बड़ी टेंशन उनकी फिर दोबारा हो गई है, उसके ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ भी किया, लेकिन कनाडा जो है वो डट गया। वो कहता है कि तुम हमारे पर टैरिफ लगाओगे तो हम भी तुम्हारे पर टैरिफ लगाएंगे। तो क्या ट्रंप
1: जी शुक्र कीजिए कि अभी उन्होंने नया ट्रेड को अपने नाम से मंजूर नहीं किया।
0: हाँ, उसने ट्रंप लेट नहीं कह दिया उसको,
1: लेकिन उन्होंने ईरान और ओमान के दरमियान जो जो खलीज है उसको कहा है कि ये अमेरिकन टेरिटरी है।
0: हाँ, उसको भी ये उन्होंने अपनी टेरिटरी पर कैसी हमकतों वाली बातें करते हैं।
1: तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ममालिक जो हैं जिन्होंने ये वादा किया है, क्या इनको अपने दुश्मन का पता है कि कौन किस पर हमला कर सकता है? आपने एक मिसाल दी कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा तो क्या आप समझते हैं सऊदी अरब उसकी इमदाद को आएगा? सऊदी अरब की इस वक्त जितनी हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट है और हिंदुस्तान में नहीं अमेरिका की तरफ से भी मौजूदा वजीर आजम मोदी जो हैं उनको जब गुजरात के बुचर का नाम दिया गया था तो आपको याद है कि सऊदी अरब ने कुछ तकरीबन 2 साल हो गए उन्हें सऊदी अरब का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट अवार्ड जो है वो उनके गले में
0: बनाया।
1: और इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी आयल रिफाइनरी जो है वो सऊदी अरब के पैसों से वहाँ बन रही है।
0: वो जब पैसा आता है तो उसके बारे में वो बिल्कुल ये सोचते इंसानी हकूक की बात ही करते हैं।
1: और ये पाकिस्तान जो है ये तो बीच में बस अच्छा है, इसका जिक्र होता है जी, इसको अपनी औकात का और अपनी बुकत का पता है।
0: जी जी, अच्छा अभी ट्रंप की हम बात कर रहे थे तो अमेरिका पिछले 200 साल में पूरी दुनिया से लोग जो है वो अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे सेटल होते हैं, तो एक ख़ास वीज़ा है जो स्किल वर्कर के जो है उस वीज़े के तहत वहाँ पे उनको आने की इजाज़त होती है। अब ट्रंप साहब ने क्या किया है, उन्होंने कहा कि जो लोग H-1B वीज़े स्किल वर्कर वीज़े पे आना चाहते हैं उनको $1,00,000 जो है वो जमा कराना पड़ेगा। अब बताइए किस गैर मुल्क में $1,00,000 जो हैं वो होंगे? तो ये ट्रंप साहब की जो हरकतें हैं वो एक प्रेसिडेंट को जेब नहीं देती, लेकिन वो कर रहे हैं। अब इसके बारे में
1: आपने आपने ये बात बिल्कुल बजा कही, बस ये प्रेसिडेंट उनको ये चीज़ें जेब नहीं देती,
0: बिल्कुल
1: उनको आदमी सियासत का रुख देखना चाहिए। और खुद अमेरिका की इस वक्त जो खास तौर पर टेक्नोलॉजी के शोबे में आफादी कुवत की मांग है उसको सामने रखना चाहिए। आपको मालूम है कि हजारों की तादाद में हिंदुस्तानी जो हैं वो अमेरिका की IT कंपनी से मुंसलिक हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल,
1: हजारों की तादाद जी। तो अगर वो इस तरह की कोई हदबंदी रखते हैं कि इतनी फीस अदा करें तो शायद ही कोई उधर आए, लेकिन वो ये कह रहे हैं साथ ही कि ये फीस जो है ये कार दहिंदा जो है वो जमा करवाए,
0: जो कंपनी जो उनको बुलाती है वो जमा कराए, लेकिन वो तो नहीं।
1: और अगर फर्ज कीजिए अगर कंपनी को 4-5-3-4 आदमी चाहिए तो वो क्या इतनी रकम जमा करवाएगी?
0: Exactly.
1: और यही चीज है, आपने पिछले दिन शायद नोट किया हो कि बस छोटी छोटी कंपनियां जो हैं वो अमेरिका से कूच कर रही हैं। अभी आप गैर मुल्क की सरमाया की बात कर रहे थे, शायद रजा साहब बोल रहे थे कि आप भी कि ये अरब जो हैं ये वहाँ अपना रुपया क्यों रखते हैं, अपने पैसे उधर क्यों रखते हैं? आपने देखा है कि यूरोप के एक मुल्क ने बड़ा जुर्ममंदाना कदम लिया है
0: जी,
1: हॉलैंड ने वहां से अपना सोना जो है वो अपने मुल्क वापस बुला दिया
0: अमेरिका से। हाँ जी बिल्कुल,
1: अमेरिका के बैंकों से अपना सोना निकाल लिया है
0: जी,
1: और उसने वजह ये बताई है कि अमेरिका के गैर मुतजलजल जो जो जो हालात हैं उनकी वजह पर वो वहाँ अपने आप को महफूज नहीं समझते,
0: लेकिन वो डॉलर छापते रहते हैं, अब क्या किया जाए इसका। अच्छा नसर भाई, हमारा
1: बात नजर नहीं आती।
0: जी जी बिल्कुल, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और मुख्तलिफ मौजूआत पे अपनी राय दी। तो अगले हफ्ते तक
1: आपके सामईन को नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम हो, अल्लाह सबको अपनी पनाह में रखे, और यहाँ जन्मात में जो हालात हमें खुदा नखास्ता दिखाई दे रहे हैं
0: जी
1: जी उनसे निजात मिले।
0: बहुत बहुत शुक्रिया रजा भाई, ये था आज का हमारा प्रोग्राम बातचीत के संग। तो अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते हमने 2 गेस्ट जो है उनको बुलाया है, तो वो जो है 11:30 से 12 बजे तक हमारे 2 गेस्ट जो हैं उनसे बातचीत होगी, फिर 12 से 1 बजे तक नसर साहब के साथ बातचीत के संग में। तो अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984। ईमेल रेडियो स्नैपलाई।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बाबे फूके दियां फूकां ते पहला प्रोग्राम सामेन नाजरीन लेके रेडियो हम वतन और नई दुनिया से हाजिर हैं आपके लिए बाबे फूके दियां फूकां। और स्टूडियो में पहले मैं अपना तारफ करा देता हूँ, आपके मेज़बान मैं रज़ा मुस्तफ़ा और स्टूडियो में मेरे साथ जनाब बाबा फूका उर्फ डैनिश तशरीफ़ रखते हैं। और पिछली मरतबा हमने इस प्रोग्राम का इंट्रोड्यूस कराया था कि इस प्रोग्राम में हम जो है वो क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम हंसा मजाक करेंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं वो उन पे बात करेंगे, जो हमारे कल्चरल इशू हैं जिनको हम जो है वो समझते हैं, गलत भी हैं लेकिन फिर भी हम उनको करते आते हैं, और इसी तरह की कुछ जो हैं वो बातें हैं जो हम इस प्रोग्राम में किया करेंगे। और बाबा फूका साहब हैं, उनके से हम जो है वो जो है फूक मरवाया करेंगे कि अल्लाह ताला जो हमारे वो जो हाल पे जो है वो रहम करे। बाबा फूका साहब सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम जनाब।
1: जनाब जनाब आज जो है इस प्रोग्राम का बकायदा जो है वो हम आगाज़ कर रहे हैं
2: बिस्मिल्लाह।
1: और सामिन नाजरीन इस प्रोग्राम में आप फ़ोन करके हमें जो है वो किसी की सालगिरह हो, किसी को मुबारक देनी हो वो भी आप जो है इस प्रोग्राम में कर सकते हैं, किसी की शादी, खाना आबादी, बर्बादी नहीं खाना आबादी, आबादी
2: या बर्बादी भी कह दो कोई गल ठीक ही गल
1: नहीं नहीं आबादी है जनाब, आबादी बढ़ती है ना उससे,
2: ये तो बात
1: है ठीक है, तो ये खाना आबादी है
2: बिल्कुल
1: ठीक है। तो उसकी अगर किसी ने सालगिरह देनी हो तब भी आप जो है फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप बल्कि वो टॉपिक भी आज लेके आए हैं रंग में पांग, तो उसमें भी ये बात करेंगे कि उसकी भी आप मुबारक दे सकते हैं अगर किसी के यहाँ

0: बच्चा हुआ है, किसी के यहाँ कोई, किसी को अच्छी नौकरी मिली है, लेकिन ये सारी अनाउंसमेंट आपने तब करनी है जब आपके पूरे काम हो जाएं, क्योंकि आप पहले कर देंगे ना तो लोग पहले ही वो बाबे फूके को लेट उठ जाएंगे और वहाँ पे जाके ना उनसे फूके मरवाने शुरू कर देंगे। जी तो बाबा फूका साहब, चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं।
1: बिस्मिल्लाह।
0: और पिछली मरतबा जब हमने अपना प्रोग्राम किया था तो उसमें हमने काफ़ी बातें की थी, ख़ास तौर पे एक बात जो एक टॉपिक था जिसपे आखिर में हमने किया था कि जो बच्चे लड़के ख़ास तौर पे जो काम नहीं कर रहे होते, जो आवारा लफंगे ज़िंदगी को सीरियस नहीं, किसी पल्ले जो है वो लग नहीं रहे होते, तो उनके माँ बाप कहते हैं कि जी ऐदा ब्याह करा दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, जब शादी होएगी जिम्मेदारियाँ पड़ेंगी तो आपे सुधर जाएगा।
1: बिल्कुल
0: तो वो फिर आपने कहा था कि जी कोई जड़ियाँ ना मामा वो बेड से गिरेंगी
1: बिल्कुल
0: उनको,
1: जी।
0: तो कोई आया आपको वो क्या कहते
1: तीन
0: हैं,
1: गिरी हैं, तीन,
0: तीन तीन
1: एक एक तो चिट्टे चाने वाली चिट्टे पूरे कंफर्म टट्टी है, नील भी पे है,
0: नील भी पड़ा है,
1: नील भी पड़ा है, मैंने आपको कहा था तस्वीर में बहुत असर है।
0: यानी कि बाबा फूका सा, लेकिन इतने सारे लोगों में से सिर्फ तीन कंफर्म गिरी हैं।
1: और नहीं वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है ना,
0: अच्छा वो
1: वो ज़्यादा ही आगे
0: हाँ,
1: हो जाती है, फिर
0: यानी आप
1: उन्होंने
0: उत्तर में आ गए, मेरा मैं रोटी बना के दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, फिर पहिया ने ना,
0: और जो नील पड़े बच गई हैं या कोई
1: नहीं
0: हॉस्पिटल वगैरह में
1: नहीं
0: जाना
1: नहीं
0: पड़ा?
1: हम जब जब भी तस्बीह फेरते हैं तो जान लेने के लिए नहीं फेरते, सिर्फ सिखाने के लिए कि भाई थोड़ी अक्ल करो, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, कुछ ज़रा प्रोटेक्शन करनी चाहिए ना इंसान की।
0: ठीक, तो
1: वो मेरी
0: यानी
1: तस्बीह टाइगी,
0: इसको संभाल के रखें कि
1: उन्हें वो
0: क्योंकि
1: पावर है, पावर है, ये गिरती रहती है,
0: ये जब जलाल आता तब होता ही
1: तो
0: है।
1: ये वो तस्बीह का जिक्र किया ना लिए थोड़ी जी। हाँ
0: अच्छा बाबा फूका साहब, फिर वो यानी कि अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है,
1: बिल्कुल ठीक है
0: तो
1: जी,
0: कोई
1: बिल्कुल
0: अक्ल भी
1: ठीक,
0: आई है या हमें ये अटैक है? क्योंकि नॉर्मली जब आप गिरते हैं ना तो वो दिमाग हिलता है थोड़ा सा,
1: बिल्कुल हिलता है,
0: तो
1: मैं आ गया
0: वो
1: तो दिमाग है तो पूरा जिस्म ही लग गया है।
0: तो गुआंडी जो नीचे रहते थे उनको फर्क नहीं पड़ा?
1: हो सकता है कोई वाश आज आई और ठाठ हो दी, एक अलग गल है फिर।
0: ठीक हो गया तो, लेकिन कोई यानी
1: हाँ भले एक जगह फर्श का नुकसान हो है बहुत, वो भी भरना पड़ेगा ना फिर अलग,
0: क्या हुआ?
1: वो जो बन जो एक माँ गिरी है वो ज़रा इतनी ज़ोर से गिरी है कि ना वो क्या कहते हैं उसको, फर्श के अंदर ना टोया हो गया, टोया,
0: तो टोया आप सीमेंट लेके फिर कोई भरेगा
1: ये तो
0: उसको?
1: फिर अल्लाह बेहतर जाने, किसी को फ़ोन करें भर दें ना, ना प्रोटेक्ट करें अपने बच्चों ने इतना, क्या ना बावे की फूक पई ना तो बंदा बैठ दू तले आंदा सीधा,
0: नहीं पर बाबा जी, अगर कोई माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है तो
1: बिल्कुल
0: इसमें गलत बात तो नहीं है, क्योंकि हर माँ जो है,
1: जायज़ प्रोटेक्शन करना गलत
0: अच्छा
1: बात नहीं है,
0: जायज जायज,
1: जायज़, लेकिन जिधर आपका बेटा आपका बच्चा या कोई भी हो, चाहे बेटा हो बेटी हो, गलत हो उसको कहो कि वो गलत है ताकि वो इस चीज़ से सीखे।
0: ठीक हो गया, सही। तो बाबा फूका साहब चलते हैं आगे, और सालगिरह का हमने एक स्पेशल जो है वो म्यूजिक भी निकाला है,
1: बिल्कुल जी
0: जिसकी कोई सालगिरह हो, और साथ साथ समय ना आपको टेलीफोन नंबर देते जाते हैं कि टेलीफोन नंबर है 3321-298-43-21-29-84। इस प्रोग्राम में जो है वो आप फ़ोन कर सकते हैं, और फेसबुक नई दुनिया पे आप जाके इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, वहाँ पे आप कमेंट करेंगे। लास्ट टाइम बहुत से लोगों ने जो है इस प्रोग्राम में कमेंट्स किए थे, और अभी भी माशाल्लाह तीन जो प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह ताला जो है वो आप देखने वालों को रंग लाए, आप जो है बसते रहें बसते। ओ एक और आ गया, देखिए दुआ देने से उसमें भी बरकत होगी, तीन से
1: मैं
0: चार हो
1: कहना
0: गए,
1: जी नदी अखा नूर है,
0: नूर है नूर।
1: नूर नूर
0: तो उनसे जो है वो क्या कहते हैं, ये एक तो जो है अभी आसरी है, ये निसा दिल साहबा, ते अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं जनाब
1: वाले
0: मलिक
1: सलाम, वाले
0: मलिक वहीद
1: सलाम,
0: साहब, और कहते हैं अस्सलाम
1: वाले
0: वालेकुम बाबा जी,
1: वाले सलाम, वाले सलाम,
0: जी इन
1: सलाम
0: वास्ते को खास दुआ कर दें
1: कि नास्ते
0: ये जो लिख रहे हैं
1: जी, बिजा तला लखा जी नूर पाए, बाबा जी नु तकन दी तौफीक दवे,
0: आमीन,
1: ते अल्लाह ताला अकल दवे,
0: माशाल्लाह जी
1: हिदायत दवे,
0: बरकत होगी, 6 हो गए जी।
1: माशाल्लाह ले और बदन के कोई प्रॉब्लम नहीं है,
0: चले
1: बाबा जी बरकतान।
0: बाबा जी, लकीर ते फकीर
1: हाय हाय पीरो ना ज्यादती करो इतनी,
0: ते
1: मतलब पहला मौजू ही था आपने इतना गहरा निकाल दिया, लकीर का फकीर क्या
0: लकीर
1: बात
0: का
1: है,
0: फकीर, बिल्कुल जनाब।
1: ओए बोतल कितने मारा मत्थे दे, मैं
0: केड़ी बोतल चाहिए थी बाबा जी, मैं ले
1: वो
0: आके
1: कह नहीं
0: दूंगा,
1: सी लेकिन चलो गल कोई नहीं, मैं हाथ ही मार लेता,
0: हाथ मार देता,
1: लकीर दा फकीर
0: लकीर का फकीर। अच्छा
1: साडे कल्चर इच क्या बात है इस चीज़ की,
0: जी
1: जो लोगों ने किया ओए करना है, अकल नहीं इस्तेमाल करना,
0: अकल ऐ
1: अकल इस्तेमाल ही नहीं करनी, मतलब दादा बू दे दादा बू दे दादा बू ने किया क्या करना है, अगे छह नस्लां ने यही काम करना है,
0: सही है,
1: क्या बात है भाई, अल्लाह ने दिमाग नहीं दिता, जब नजर आ रहा है कि कोई चीज गलत है
0: ठीक है
1: तो तुसी उन्हों क्यों कर दे पे हो, लेकिन नहीं बुजुर्गों ने क्या करना है ते करना है, लकीर का फकीर,
0: लकीर का फकीर,
1: क्या बात है पीरो, क्या मौजू लेके आए हो
0: बाबा जी, इस पे जरा रोशनी डाले ना थोड़ी सी, फिर
1: के रोशनी पाई जनाब, अकल होंदी है अल्लाह ताला ने दिता है, GPS कह रहा है सीधा जाओ सीधा अगे पानी है, लेकिन जाना पानी विच ही है गड्डी समेत।
0: अच्छा वैसे लकीर का फकीर मैं पता है किसको कहता हूँ
1: जी, बिल्कुल जी पीरो,
0: कंप्यूटर को। अच्छा कंप्यूटर में आपका पासवर्ड है ना,
1: बिल्कुल,
0: अगर आपने एक जो कैपिटल लेटर लिखा ना वड़ा वड़ा करके,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, अगर उसको आप छोटा लिख देना ओ ही, ए को छोटा कर दे बड़े के बजाय,
1: बिल्कुल,
0: तो यकीन करे वो कंप्यूटर की भी जो है ना वो फाइल लग जाएगा, वो कहेगा तेरा, वो कभी कभी होता है कि आपने कैप्स लगा
1: दिया, बिल्कुल पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होता,
0: बंदा लगा रहता कहता है यार मेरा पासवर्ड भी है यार, बाहर चक्कर आती है, ले
1: कैप्स लॉक लगा,
0: कैप्स लॉक लगा,
1: बिल्कुल, तो यही अकल बंदा पहले इस्तेमाल ना कर ले,
0: नहीं पर कई बार
1: कंप्यूटर को भी तो इंसान नहीं बनाया ना,
0: लेकिन वो आंखों पे पर्दा भी आ जाता है ना कभी कभी बीरों,
1: तो फिर दो चपेड़ा लाओ पर्दा हट जाएगा,
0: ये फिर तुम्हारे को टोरिए ने,
1: मैं कहना फेरो ये तो 5 मिनटा का काम है, ये तो तस्वीर की जरूरत ही कोई नहीं, तस्वीर की जरूरत ही।
0: अच्छा ये तो ये हो गए लकीर के फकीर, अच्छा GPS की बात कर रहे थे,
1: बिल्कुल
0: जी, तो इसमें हमारे जो काफी जो कल्चरल चीजें हैं ना,
1: बिल्कुल
0: बाबा फूका साहब, उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो हैं हम उसको अपने इस लकीर के फकीर के चक्कर में ले आते हैं,
1: बिल्कुल ले
0: आते हैं, इस तरह के मिसाल के तौर पे अब जिन्होंने अपनी बेटी जो है वो ब्याह के भेज दी,
1: बिल्कुल,
0: फिर कहते हैं जी कि हमने इनके घर पानी भी नहीं पीना, अपनी बेटी के, बेटी का बात कर रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: खाना भी नहीं खाना और रहना भी नहीं,
1: माशाल्लाह,
0: ये दसें बाबा फूका साहब
1: जाहिल पान,
0: इनका क्या हल हो सकता है,
1: इन्हें तो कोई हल नहीं,
0: क्यों
1: लकीर दे फकीर हैं,
0: अच्छा
1: इधर रोला ना जद्दी पुछती तो एक चीज़ चली आ रही कि बेटी के घर पानी नहीं पीना, मैं क्यों बेटी के घर पानी राम है,
0: नहीं हो सकता उनके घर में पानी कम हो,
1: वो यार एडा भी काट पानी ग्लास पिलाना के हो गया, मतलब क्यों वजह, आज तक वजह किसी ने बताई है कि ये इंसान क्यों कहते हैं बेटी ओखी है गलत घर भी आ दी है जिसकी वजह से आप उसके घर को पानी नहीं पी रहे या कुछ खाना नहीं खा रहे,
0: ना दमाद है, फिर वो क्या क्या बातें करते हैं कि जी तुम्हारे माँ बाप आ गए तुम्हारे बहन भाई आ गए खा पी के चले गए, वो बातें भी तो हम बड़ी सुनाते हैं ना, फिर बहू को सास भी सुनाती है खामद भी सुनाता है,
1: पानी पीने दो तो गल कौन सुनांदा यार, पानी पीना पिलाना स्वाब का काम है, 10 नेकियां मिलती है बचपन से सुनते आ रहे, अगर आप पानी पिलाओ किसी को तो 10 नेकियां मिलती हैं,
0: कहते हैं पानी मांग के पीना चाहिए,
1: मैं तो गिनता होता था 1, 2, 3, 4 आज 50 नेकियां पूरी हो गई,
0: आप पिलाते थे या पिलवाते,
1: जी मैं पिलाता था जी, पिलाता गिनता होता था,
0: इतना ही आज बाबा फूका बन गए
1: नेकियां, पानी पिया पिया
0: पानी पिया,
1: ज्यादा VIP बंदा आए तो बोतल खोल लेने,
0: लियाकत साहब वालेकुम सलाम, ये सॉरी लियाकत अली कादरी साहब आपको सलाम भेज रहे हैं बाबा,
1: बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, लियाकत साहब वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम जनाब,
0: माशाल्लाह जी ये बड़ी रौनक लग गई है
1: माशाल्लाह,
0: ठीक है फेसबुक पे और रेडियो पे और लाइव स्ट्रीम पे बड़े लोग जो हैं वो हमें सुन रहे हैं, तो फ़ोन कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, अगर कोई सवाल हो कोई आप बात करना चाहते हो कोई मुबारकबाद देना चाहते हो कोई फूक मरवाना चाहते हो बाबे फूके से, तो आप जो है जनाब बिल्कुल बाबे फूके साहब को जो है वो फ़ोन करें,
1: बे पीरो फोतकी दे खाने का जिक्र नहीं किया तुसे,
0: अब अच्छा उधर ही उधर ही आ रहा था
1: प्लीज उधर आए आप, अच्छा ये भी बहुत जरूरी चीज है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा,
0: थोड़ा सा वाइंड अप कर लेना कि बेटी के घर जो है वो खाना
1: नहीं, देखे सर इंसान को अकल करनी चाहिए, बेटी का घर बेटी होती है, ठीक है आपने ब्याह दिया आप उसको अपने घर आपने भेज दिया, उसके घर जाके पानी पीना या कुछ खा पी लेना बुरी बात नहीं है, उल्टा बल्कि बेटी का भी ख्वाहिश होती है कि जब मेरे माँ बाप या मेरे बहन भाई मेरे घर आए अच्छा खा पी के जाएं, मैं उनको दिखाऊं कि मैं एक अच्छे घर में भी आई गई हूँ, खाना पीना उनको खिला सकती हूँ, ये कुछ करना ये बुरी बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि लोग कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो बातें सुनाएंगे ये वो, लेकिन आप इस चीज़ को ना देखें, आप अपनी बेटी की खुशी को देखें,
0: और बाबा फूका अभी ठीक है ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना वो इसमें बड़ी सियासत ले आते हैं,
1: सियासत क्या
0: ये, यानी घरों में भी जो है ना वो सियासतें चल रही होती हैं कि, और यकीन करें मेरे ख्याल में जो बेटियां होती हैं ना,
1: बिल्कुल
0: जब आप उनके पास जाते हैं उनका दिल बाग बाग हो जाता है,
1: बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है,
0: तो वो खुश होती है, जिस तरह आपने कहा ना कि फिर उनको खिलाती हैं खुशी से कि मेरे मेरे माँ बाप बहन
1: बिल्कुल जी बिल्कुल,
0: तो आप जब महीना महीना साल साल जाते ही नहीं है ठीक है, तो फिर ये भी गिला करते हैं कि वो आती भी नहीं है।
1: बिल्कुल। तो लेकिन आप ये सोचे ना, जिस टाइम आप नहीं जाते अपनी बहन बेटी या जिसके भी घर साल साल डेढ़ डेढ़ साल, तो आपने कभी सोचा कि उसके दिल पे ये चीज़ क्या गुजरी होगी? कभी सोचा? मतलब जिस घर में वो पूरा उसने अपनी जवानी अपनी सब कुछ गुजारी, जिन बहन भाइयों के साथ बचपन गुजारा, ये वो साल साल डेढ़ डेढ़ साल उसको पूछे ही ना, तो उसके ऊपर क्या बीतरी होगी? तो इस चीज़ की भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसके ससुराल वाले उसको बातें सुनाते होंगे, तेरे तो आंदे ही नहीं, तेनों मुँह ही नहीं लाते, साढ़े सट के तो चले गए ने ए वो वगैरह।
0: बाबा जरा फूक मारो,
1: फूक बिस्मिल्लाह कुमाक मारनी पेगी, क्योंकि ससुराल वाले जड़े ना इन्होंने अकल नहीं आती बहुत ज़्यादा जरा ना तक्यो कि तस्बी मुँह तो पीरो ना पै जाए थोड़े अल्लाह अकल देना सारियां जिनियाँ तियाँ व्याहियाँ गई अपने अपने घर अल्लाह ताला उन्होंने सुख दे ते जिन्होंने व्याहियाँ ने अल्लाह उन्होंने अकल दे ते जहालत जी साढ़े कल्चर विचू हटा।
0: जनाब जफरवान साहब बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का, और उन्होंने पंजाबी में लिखा, मैं कोशिश करता हूँ पढ़न की, बेटी दी पहली खा जाते पर उदे करूँ पानी नहीं पींदे, ये समझ नहीं आई है जरा, इसको जरा उर्दू में ट्रांसलेट।
1: जफर साहब प्लीज जरा आसान जुबान ही लिखियो, पीरी पीर है वहाँ लेकिन अड्डे वड्डे पीर नहीं है, थोड़ी जी ज्यादती ना करो इतनी, पढ़ने के काबिल कर दो।
0: ठीक है, अच्छा
1: रिकमेंड करें जफर साहब, रिकमेंड करें हम फिर पढ़ेंगे,
0: या हमें फोन करके जो है ना इसके,
1: या फोन कर ले, बिल्कुल बिल्कुल कोई मसला नहीं, ट्रांसलेट वो कहते ट्रांसलेट ही कर दें।
0: पीरो
1: जी नहीं तुसी पीरो, मैं बाबा हूँ।
0: आदे ने टा दे मस्जिद टा दे मंदिर पर एक बंदे दा दिल ना टावी रब दिला विच रहंदा।
1: ओए होए होए इथे बाबा ना टै जाए किथे यार, एडी डैडी शायरी पीरो के करदे पे हो?
0: ना ये असी नहीं कीती, ये साडे वड्डे कर गए जे।
1: ओ वड्डे कर गए ने, तुसी तो हुन लाइव कर रहे हो ना, मैं इथे टै जाना जे।
0: अच्छा ये भी
1: मते गद्दी ना टा दे मेरी,
0: ये भी इसी के साथ अगर हम इसको थोड़ा सा मिला लें
1: जी,
0: ये जो हम बात कर रहे हैं कि बेटी के घर पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना,
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा चलें, हाँ जब जाते हैं तो थोड़ा सा साथ ले जाएं,
1: जरूर लेके जाएं,
0: तोहफा शोफा जो भी
1: जरूर लेके जाएं,
0: लेकिन ये नहीं कि आप जो है वो टोकरियां भर के लेके जा रहे हैं कि जी हुण बेटी के घर जा रहे हैं।
1: नहीं नहीं नहीं टोकरियां क्यों जी, मेरी माँ बाबा जी की माँ कहती होंगी सी कि खाली आज किसी के घर नहीं जाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: तो जरूर लेके जाएं कोई छोटे से तोहफे या तोहफे जो आपने लेके जाने लेके जाएं, लेकिन इतना भी ना लेके जाएं कि आप ये इंप्रेशन दे रहे होंगे जिस तरह वो अल्लाह माफ करे बिल्कुल भूखी नंगी रह रही है, इस तरह कुछ तरीकाकार होता है ना हर चीज का एक।
0: मैं बाबा जी ये कहना जो भी करो ना दिलों करो,
1: दिलों करो
0: ठीक है, और किसी का दिल ना तोड़ो।
1: हाँ जी, तो पाकिस्तानी हम लेके जाओ जो भी जाओ, तो अगर कन्फर्म कराना है कि हम पाकिस्तानी है तो नहीं कौमी तरह ना लाओ, अगर हम खलो गए तो पाकिस्तानी है। क्या बात है, तको ना पाकिस्तानी हम तो कौमी तरह ना लाओ, तको हम ना खलोया गल करो चौंसा चौंसा
0: लंगड़ा
1: नहीं हो दुआ की अनवर राठौर साहब भी है,
0: अभी समझ नहीं आई कि उसका नाम अनवर राठौर क्यों है,
1: मैंने तो बड़ा पसंद है वैसे वो नाम उसका अनवर साहब।
0: हाँ हेलो जी जनाब जफर अवान साहब आए जी
1: दोबारा,
0: उन्होंने क्या शानदार जनाब गल की जी,
1: वो ही ने जिन्होंने पंजाबी
0: जी, जी, जी। लिखते ने हम लोग बहन बेटियों की जमीनें खा जाते हैं मगर इनके घर पानी नहीं पीते।
1: मैं कहना शो ही मुक्या थे, चलो जफर साहब ने गल इतनी बड़ी काल थी,
0: यकीन करें जफर
1: बहन बेटियों की जमीन खा जाते हैं, क्या बात है, लेकिन उनके घर पानी पीना खाना खाना पसंद नहीं करते। जफर साहब प्लीज यल्ला तुझे भी मेरे नाल गद्दी बिछा लो, जफर साहब दो फूका तुम्हें भी मारनिया चाहिए।
0: मैं इन जनाब जफर वान साहब को जानता हूँ
1: माशाल्लाह,
0: और ये पंजाबी में शायरी लिखते हैं,
1: हाँ हता भी आके पंजाबी में कमेंट
0: करें, और इनकी जो शायरी है वो कभी आप पढ़ें
1: क्या बात,
0: तो यकीन करें आपके रोंटे खड़े हो जाएंगे
1: जी।
0: लेकिन पीर बाबा फूका साहब आप तो वो शायरी पढ़ते ही नहीं ना,
1: क्यों नहीं पढ़ते,
0: सिर्फ फूका मार दे,
1: मैं आपको शायरी करना हूँ,
0: शायरी कर
1: जी जनाब, शादी में सबसे बड़ी चीज इंसान एक औरत को क्या चाहिए होती, ताबेदारी,
0: ताबेदारी
1: मर्द की ना, इस पे शायर कहता है जी,
0: वो पता क्या कहता है,
1: क्या
0: वो कहता है मैं शायर तो नहीं,
1: नहीं नहीं नहीं तुझे गलत लगा चले गए ना, सीधी जी गल है, तो शायर कहता है जब भी पुट कुट के जपा एक बार गुजरा सावी जिंदगी रवानगी ताबेदार गुजरा, गल मुक गई
0: ਗੁਜਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ?
1: ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ? ਸਿੱਧਾ ਜਦ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਬੇਦਾਰ।
0: ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਨਕਾ ਕਿਆ ਕਰੇ?
1: ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ ਤਰ੍ਹਾਂ।
0: ਅੱਲਾ,
1: ਇਹਦੇ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਲਾਓ, ਆਪੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
0: ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕਹਤੇ ਕਿ ਉਨਕੋ ਬਿਠਾਏ ਸਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ, ਲੇਕਿਨ
1: ਸਰ ਤਵੱਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆਪਣੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਦੇਖੇ ਹਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੇ ਨਾ, ਹਮੇ ਮਿਸਾਲੇ ਦੇਤੇ ਥੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਟਾਟੋਂ ਪੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਪੇ ਲਾਈਟੋਂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ
0: ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ।
1: ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ।
0: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ, ਕਹਾਂ ਕੀ, ਅਬ ਮੁਝੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਹਾਂ ਪੇ ਅਭੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੋ 100 ਮੇਂ ਸੇ 53% ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 47% ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੱਕ ਲਓ ਇਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ?
1: ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ।
0: ਯਹੀ ਤੋ ਹਮਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮਰਤਬਾ ਬਾਬਾ ਫੂਕ
1: ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਬ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਓ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲਵਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਰ?
0: ਇਹ ਮੈਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਥਾ ਮੈਨੇ
1: ਕਿ 53% ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੈਂ।
0: ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੈਂ, 47% ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈਂ।
1: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਮਾਰਾ ਮੁਲਕ।
0: ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਜ਼ਫਰ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੋ ਆਪ ਜੈਸੇ ਬਾਬੋ ਕੇ ਲੀਏ ਵੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤੇ।
1: ਹਾਏ ਹਾਏ,
0: ਬਚ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਫਰ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ।
1: ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਕਈ। ਜ਼ਫਰ ਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ।
0: ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਢਾਦੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਟੰਦ ਆਈ,
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟਾਵੀ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਮ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਨੇ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਲਗੇ ਰਹਤੇ ਹੈਂ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਲਗੇ ਰਹਤੇ
0: ਹੈਂ,
1: ਯੇ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਕਲਚਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।
0: ਤੋ ਹਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਕਿ ਚਲੇ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਮ ਹੈ ਉਸਕੋ ਹਮ ਸਹਾਰਾ ਦੇਂ ਜਾਂ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਉਸਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਂਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ
1: ਸਰ, ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮ ਕਾ ਜਾਂ ਹਮਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਕਾ ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਘਰ ਫੋਤਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ
0: ਜੀ,
1: ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਘਰ ਫੋਤਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਘਰ ਫੋਤਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਕਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਵਾਲਦ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਵੋ ਆਪਸੇ ਛਿਨ ਗਿਆ, ਤੋ ਲੋਕ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਮੇਂ ਖੜੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਕਲਚਰ ਮੇਂ ਕਿਆ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੁਖਾਨੇ ਵਾਲੀ।
0: ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ,
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਤਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ,
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਠੀਕ ਹੈ,
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਵੋ ਖੁਦ ਜੋ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
1: ਉਨਕੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਟੂਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਆਪਣੇ ਚਾਏ ਪਿਲਾਨੀ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਖਿਲਾਨੇ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਵਲ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬੋਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚੰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੱਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ?
0: ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਿਲਵਾਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ,
1: ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ
0: ਜੀ,
1: ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਮੇਰਾਤ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਾਏਗਾ, ਵੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੇ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋ ਕੈਸੇ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਦਾਲ ਪਕਾਓ, ਦੋ ਨਾਨ ਰੱਖੋ, ਕੋ ਖਾਓ ਤੇ ਜਾਓ।
0: ਨਹੀਂ ਤੋ ਅੱਛਾ, ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉ ਨਾ ਇਸਕੋ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤੋਂ ਮੈਂ ਤੋ ਹੋਤਾ ਥਾ ਕਿ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ
1: ਹੋਤੀ, ਸਰ ਅਭੀ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ।
0: ਤੋ ਅਬ ਜੋ ਹੈ, ਅਬ ਤੋ ਆਪ ਫੋਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਪੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪ ਉਸੀ ਵਕਤ ਫੋਨ ਕਰੇਂ ਔਰ ਜਨਾਬ ਕਹੇਂ ਕਿ ਜੀ ਹਮੇ 10-20-50-100 ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਏ,
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਤੋ ਵੋ ਆਪਕੋ ਜੋ ਹੈ 2-4 ਘੰਟੋਂ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ।
0: ਤੋ ਅਭੀ ਵੀ ਹਮਨੇ ਵੋਹੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪੁਰਾਣੀ ਰਸਮੋਂ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ
1: ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ।
0: ਬਾਬਾ
1: ਸੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਪੀਰੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
0: ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਫੂਕੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ?
1: ਬਾਬਾ ਫੂਕੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖੁੱਲਣਗੇ,
0: ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 33-21-29-84-3-3-2-1-2-9-8-4, ਇਸ 'ਤੇ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਹਮੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਨਕਾ ਕਿਆ ਕਰੇ?
1: ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
0: ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੇ, ਬੱਚੇ ਕੋ ਸਾਥ ਉਸਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਖੁਦ ਅਗਰ ਆਪ ਖੁਦ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ?
1: ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਵਾਲਦੈਨ ਕਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਵਾਲਦੈਨ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਧਿਆਨ, इस चीज़ पे होना चाहिए। तो जारी बात है बच्चा थोड़ा फोकस करेगा, लेकिन आजकल पीरो है जो सोशल मीडिया ने इन्हें भी बच्चों ने बहुत तबाह किया।
0: लेकिन ये सोशल मीडिया हमने बड़ों ने वालदे ने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया ना,
1: ये भी तो है वैसे, ये भी है, लेकिन आप तो उस पर तरीकाकार को रखें ना, ये तो नहीं ना कि आप उनको पकड़ा के तो पूरा दिन ही उस पर बिठाई रखें।
0: क्योंकि बाबा फूका साहब आपको तो खूब पता होगा कि जब आपके वालदैन भी आपको पूछते होंगे कि डैनिश पुत्र तू इंग्लिश पढ़ ली है, बिल्कुल अब्बा जी मैंने सबक स्कूल का होमवर्क कर लिया,
1: बिल्कुल कर लिया,
0: ठीक है, पर दिल चाहे वो सारे कागज चिट्टे हों
1: बिल्कुल
0: कॉपी के, ठीक है,
1: तो वो चेक करें ना।
0: मैं वही कह रहा हूँ ना कि माँ बाप तवज्जो
1: ध्यान ध्यान तवज्जो
0: उनके साथ बैठे हैं, उनको बताएं समझाएं कि मेरा पुत्र अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होएगा। हम ये कहते हैं मेरा पुत्र तू नहीं पढ़ेगा तो मैं तेरी शादी करा देनी है, बच्चा भी कहता है वाह
1: ये तो जैकपॉट है, ये तो जैकपॉट है, पढ़ाई ना करो ब्याह हो जाएगा, क्या बात क्या बात है, जैकपॉट है
0: जैकपॉट लगवा देता ना,
1: बिल्कुल हो गया बस फिर मैथ भी पढ़ाई छाड़ देती आज तू।
0: अच्छा मलिक भाई साहब आपने ना अगर तो आप बच्चे हैं तो खूब दिल लगा के पढ़ना है,
1: बिल्कुल
0: मैं बाबे फूके नु कहना वो जरा फूक मारेंगे, अगर आपके बच्चे हैं जो नहीं ध्यान से पढ़ रहे तो उनको थोड़ी सी तवज्जो दें।
1: नहीं वो खुद बच्चा है, उसके सवाल से पता चल रहा है
0: खुद बच्चा है,
1: ये आपको पढ़ने लगा बच्चा
0: भाई, आपकी पहुंच वैसे बड़ी,
1: मैं पता है बच्चा है तो आपको पढ़ाई कमजोर है ता पूछ रहे तस्वीर फिर ये पपीरो तस्वीर फिर ये समझ नहीं रहे हो वो आपको बच्चा है।
0: तो बाबा जी ये अब हो गया लकीर के फकीर,
1: बिल्कुल हो गया,
0: तो आप क्या कहेंगे लोगों को कि की कराने इसके लकीर के फकीर जो है ना, जो हमने एक अपने जो पुश्तों से एक चीज़ हमारे घर का कल्चर जो है मुल्क का कल्चर कह लें या घर का कल्चर कह लें
1: सेम चीज़ है,
0: तो उससे निकलने के लिए क्या ये लकीर के जो फकीर है क्या करें,
1: अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर,
0: ठीक जी अक्ल का इस्तेमाल,
1: अपनी अक्ल का इस्तेमाल, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया उस दिमाग का इस्तेमाल करो, अच्छे बुरे की आपको पहचान है और जो आपको सही लगता है वो ज़रूर करो, सीधी सी ये बात है, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी।
0: बाबा जी बाबू का ये तुम्हारे वास्ते कोई बड़ा क्या कहते हैं, मेरे ख्याल आज जफर अवान साहब जो है ना
1: शेर लिख देता है,
0: नहीं शेर नहीं लिखे उन्होंने,
1: अल्लाह खैर करे मैं गद्दी गए,
0: शुक्र करो तुम्हारे तो नहीं लिखे आलिया,
1: शुक्र करो गए,
0: लेकिन उन्होंने आप एक जो है ना वो सवाल किया है
1: जरूर सर,
0: और ये जो हमारे है ना टेक्नीशियन,
1: हाँ जी,
0: ये उनसे भी मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी मदद करें,
1: ठीक है
0: ठीक है। लो जी लिखते हैं जफर वान साहब, बाबा जी क्या आप फूक मार कर खुद को गायब कर सकते हैं?
1: मैं बिल्कुल जी बिल्कुल कर सकते हैं
0: जी, ये अभी करेंगे या प्रोग्राम के बाद या आखिर में करेंगे?
1: नहीं उन्हें कर देने हैं।
0: अच्छा
1: फूक मारना तुझे कैमरा बंद करो मैं गायब हो जाऊंगा बिल्कुल नहीं गायब होना कोई मसला नहीं है, शो तो बाद भी गायब ही हो जाना सी
0: पूरे हफ्ते बाद
1: या दो हफ्ते बाद जो भी अल्लाह ने मौका दिता फिर इतने नजर आवांगे।
0: ले जनाब जफर साहब
1: हसान आले जफर साहब या अखा बंद कर लो या दो मिनट ठहरो मैं कैमरा ही बंद कर देना गायब हो जाऊंगा
0: क्या बात,
1: ये वही जफर साहब है जो चाय का चढ़ावा दे रहे थे हमें पिछली दफा,
0: नहीं
1: उन्होंने पिछली दफा किसी ने प्यार मोहब्बत
0: सिखाया
1: वो शौकत साहब से, सॉरी आए शौकत साहब चाय का चढ़ावा ही दे दो प्यास लगी वैसे थोड़ी।
0: आज तुहाडा कप कित्थे
1: यार? पता नहीं कप चोरी हो गया, वो लभना है, वो भी फूक मार के लभना है। जफर साहब चाहते हैं मैं गायब हो जाऊँ, मेरा कप गायब हो गया, नहीं तो मोबाइल पे दा नंबर दो ना चाचू यार शुवार में तो पैसे तो इकट्ठे करी।
0: ले जी मोबाइल नंबर है 2181-36-33 असी भी नहीं रहना पिछे नंबर तो साफ
1: नंबर दो जी डोनेट करें थोड़ा बाबा भुखा है।
0: 2181-36-33 एक शवारमा जो बाबे फूके था ते एक शवारमा बाबे
1: पिछली बार भी मैं चार बार मंगे यार किसी ने एक शवारमे तो पैसे नहीं देते है भी साड़ी कल्चरल जो चीज ना खवाने वो सारे पिछे रहते हो
0: नहीं वो ये कहते हैं ना कि अच्छा चले इसको जो है ना वो किसी
1: ये चले और दिन डिस्कस करेंगे
0: इसको थोड़ा सा रोक के रखते हैं
1: बिल्कुल।
0: अच्छा बाबा फूका साहब
1: जी सर
0: ये उंगली
1: मेरी है
0: फूक तो मेरी है
1: फूक है कि उंगली है तुहाडी मुसल ते अखा भी तुसी मेरे कहने बंद कर रहे हो कमाल मेरा है
0: कमाल है ना
1: कैमरा बंद होया तुहाडी अखा बंद होया मेरा कमाल
0: मेहरबानी
1: सर आप कमेंट कर रहे हमें प्यार दे रहे हैं अल्लाह ताला आपकी शायरी में बरकत डाले तक सानू अपनी शायरी दूर रखियो भी रगड़े जाइए
0: वो वैसे जनाब उन्होंने ना अभी तक बख्शा किसी को नहीं है
1: पापा सानू बख्श दियो जी जनाब है दो मिनट तो भी फोल्ड करके कह रहे हैं सानू बख्श दियो असी तो एवं सहान आए हैं तो क्यों मत तुहाडी जगह ते गद्दी ना छिनी जाए अगले दिन शो जमीन ते हो रहे हो
0: बाबा फूका साहब लेट के टांगे मार रहे हो
1: वाह मत ऐसे असी फड़क जाइए शायरी ना
0: क्या बात है जनाब अच्छा लोग क्या कहेंगे
1: आए हाय हाय हाय
0: नहीं मेरा मतलब है अगर आप फड़ के नीचे लेट गए तो हमें फिर वो की ना है लोग क्या कहेंगे
1: वो तो वैसे भी इतना बड़ा मौजू है सर ये तो इतना बड़ा मौजू है कि लोग क्या कहेंगे इस सेंटेंस ने इस लाइन ने अच्छा। कितने ख्वाब तोड़े हैं यंगस्टर्स के कितने लोगों के आप अपना आइडिया शेयर करें किसी के साथ चाहे अच्छा बिजनेस आइडिया हो या कुछ भी हो पहले वो कहने यार नहीं फिर लोग की कहेंगे ठीक है मैंने जी गोरी के साथ शादी करनी है लोग क्या कहेंगे
0: अच्छा
1: मैंने
0: ना गोरी से जरूरी करनी है डैनिश तो आप ही हैं
1: तो यार गोरे बच्चे हो जाएंगे क्या हो जाएगा यार मिक्स बच्चे नहीं चाहिए किसी को खूबसूरत खूबसूरत से
0: चिट्टे गोरे
1: हाय हाय मजा आए ना काम वो करो जिधर खानदान किसी ने किया नहीं लेकिन फिर वो आ जाते ना लोग क्या कहेंगे ये इस सेंटेंस ने जो है ना हमारे कल्चर मतलब घरों में कितनी कितनी बर्बादियां और कितनी टेंशनें डाली है ना हाय हाय हाय हाय हाय
0: अच्छा
1: पीरो में की दसा
0: बच्चे हैं ना अब मेरे बच्चे हैं तो जब उनसे मैं पूछता था ना ये जब छोटे दो चार तीन साल के होते हैं पांच के कि बड़े हो के क्या बनोगे कोई कहता था कि जी मैं पानमैन बनूंगा कोई पुलिसमैन बनूंगा कोई कहता था स्कालमैन बनूंगा
1: क्या बात
0: ठीक है अच्छा अब काम में कोई मेना नहीं है
1: कोई शर्म नहीं होनी चाहिए जिस काम में आप मेहनत कर रहे हो मेहनत में कोई शर्म नहीं है चाहे जो मर्जी हो
0: हक्का लाल की रोटी हो
1: बिल्कुल
0: ठीक है बाबा फूका साहब तुहाडा जिहड़ा शवारमा है
1: हाँ जी
0: जे किसे डोनेट कर दिता
1: बिल्कुल
0: फिर
1: कर दिता
0: नहीं मैं पूछ रहा मैं चेक नहीं हाली तक किसे नहीं कीता
1: होना भी नहीं
0: नोटिफिकेशन नहीं आया
1: ये होना भी नहीं
0: अच्छा वैसे जफर वान साहब लिखते हैं मैंने नजराना नहीं देना मैं आपका मजार बनाऊंगा
1: हैं
0: हुण मैनू भी नहीं समझ आई
1: मेरा मजार मतलब शायरी च मजार बनाण के सच्ची मुजी दा
0: अल्लाह जानदे
1: तो क्यों जफर साहब लैड ना डुबना सानू मुझे मजार जो कुछ संजुतियां ही पैर ही उन मजार के पास
0: ये लगता है ये कि नाजरीन जो है ना महंगे पड़ जाएंगे
1: मैंने भी शवारमा नहीं चाहिए था तुझे रहने दो कुछ डोनेट ना करो रहने दो मैं खुद खा लूंगा कोई बात नहीं बाबा भुखा ही ठीक है चिल्ले भुखे कर लवेंगे डंड ना डंड डंड ना डंड
0: नहीं चिल्ले आपने तो वो खूह में चिल्ले काट के आए थे ना
1: वो तेला दगा में
0: चिट्टेपुरे में
1: नहीं नहीं खूह कर दे
0: नहीं चिल्ले तो खूह में निकाले थे ना
1: खूह दे विच खूह कर दे समझो ना
0: उसके बाद फिर आप जो है चिट्टेपुरे आ गए
1: बिल्कुल चिट्टेपुरा आया बिल्कुल उधर भी आए हम
0: अच्छा वैसे नाजरीन और सामीन अगर आपने कभी बाबे फूके को ढूंढना हो ना तो चिट्टेपुरे टूर जाए
1: हाय हाय हाय मैं कहना लभ दे रहा जोगे उत्थे जफर साहब नूं भी मैं नजर नहीं आना उत्थे मैं गायब हो जाऊं
0: क्या बात
1: है सचमुच ही गायब कोई प्रॉब्लम नहीं लोग क्या कहेंगे
0: लोग क्या कहेंगे
1: लोग
0: यही कहेंगे बाबा फूका हथे चिट्टे
1: है इस प्रोग्राम ते भी लोग तक यही कहने होंगे कि की कहेंगे कि हो की रहा ये क्यों चवला और नहीं सॉरी क्या हो रहा सॉरी
0: हाँ बाबा ये हम बातें कर रहे हैं लोगों
1: बिस्मिल्लाह बिल्कुल हम गाइड कर रहे हैं लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं साथ हंसा रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे पता है कुछ लोग बैठे हैं जो यहाँ कहेंगे एक ही कारण है लोग क्या कहेंगे ये खत्म नहीं हो सकता ना हमारे अंदर आज तक चल रहा है और मुझे हैरानगी इस चीज़ की है कि 2026 में भी आज तक हम इस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं कि लोग कहेंगे ओफ तक ओ जलाल इतस भी टह गई मेरी फिर दोबारा गुस्सा आ रहा है मैंने वैसे नहीं सर गुस्सा आ रहा है क्योंकि जी सेंटेंस है ना ये जो सेटनिंग है इसने बहुत तबाहियां मचाई हुई है। लोग क्या कहेंगे, हम लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि ये चीज़ हमें कितना फ़ायदा या नुकसान या हमें खुशी कितना देती है। और सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, बाद में इन चीज़ों के बारे में सोचो।
0: अच्छा, कई मरतबा ये अपने बारे में भी नहीं होता, ये अब आपके बहन भाई हो गए या आपके बच्चे हो गए या आपके जो साथ में, कि यार अब ये हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है, अब अगर मेरा बच्चा जो है वो नाई बन गया,
1: नाई है, बाल कटाने लग गए, खाने पकाने लग,
0: दो भाई नहीं तो वो नाना, वो नाई जो है खाने बनाता ना, वो मॉडर्न हो गया भाईजान, उसको कहते हैं शेफ कुक।
1: शेफ कुक,
0: हाँ जी,
1: क्या बोल, लेकिन पाकिस्तान पिंडा जाओ तो उन्हें नहीं कह रहा नाई को खाना बनवा ले
0: भाई, उन्हें तलीम नहीं है ना।
1: हाँ, ये भी है,
0: सॉरी, मारो थोड़ी सी तलीम उन्होंने भी जाए।
1: अल्लाह ताला और बख्श, बिस्मिल्लाह रहमान,
0: ठीक है,
1: गई है देख विच गया,
0: ते यानी काम काम कोई भी होए,
1: बिल्कुल
0: मेहनत करें, हक हलाल की रोटी कमाए,
1: बिल्कुल,
0: किसी को दुख ना दें, किसी का रिजक ना छीने,
1: बिल्कुल ना छीने जी, बिल्कुल आपका हक ही नहीं बनता,
0: आप छीन सकते भी नहीं वैसे,
1: वैसे जो अल्लाह ताला ने लिखा है वो तो आपको मिलना है,
0: वो तो आना
1: मिलना है, आप मेहनत करो। लेकिन बात वही है ना कि ऐसे लोग कुछ हैं जो वो कह रहे ना असी बैठे थे चवला मारे, ऐसे भी लोग चवल होते हैं जो बैठे वहाँ ऐसे एक एक अल्फाज, क्योंकि इंसान की ज़ुबान है ना उसमें बड़ी ताकत होती है, आपके चंद अल्फाज जो है ना वो इंसान के ख्वाब, इंसान की उम्मीद या कुछ भी जो है ना तोड़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इंसान की ज़ुबान होती है, तो इसी वजह से जो है ना आप सोच समझ के करें जो कर रहे हैं। अगर कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ अच्छा नहीं कह सकते, तो कुछ बुरा भी ना कहें उसको।
0: लो जी, जफर अवान साहब फिर आ गए जी।
1: जफर अवान साहब आज मेरे ख्याल साड़ी गड्डी छिन गई जावणगे।
0: वो कहंदे ने मजार मजार के लिए ना मरना पड़ता
1: है।
0: जी
1: के
0: मजार बनवाने के लिए मरना पड़ता है।
1: बस ठीक है, मुजफ्फर साहब प्लान कर दो, वो डिजाइन बना दो सब कुछ, जिस दिन मरे हैं उस दिन कुछ कर लवांगे, फिलहाल जिंदा रहने दो। मेरे घर भी कोई बच्चे सच्चे आए हैं। लोग क्या कहेंगे यार। अच्छा, कि बाबा अपनी गद्दी की जगह मार गया
0: ना। अभी आप लोगों को कह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, उस पर अमल नहीं करना
1: जी,
0: अपनी जिंदगी जीनी, तो अपनी बारी आके आप कहते हैं लोग क्या कहेंगे।
1: कल्चरल चीज है ना सर, क्या हो गया, मैं पाकिस्तानी तो हूँ ना बाई नेचर, वापस मुड़ के थे समझाना सारे नु, लेकिन करना उसके बराक्स है।
0: नहीं तो ये इसको दोगलापन नहीं कहते
1: जी,
0: दोगलापन
1: नहीं, इसको चवलपुना कहते हैं।
0: बाबा अबू का क्या बात है,
1: फिल्टर नहीं है सर, जो बात है सीधी सी बात,
0: सीधी
1: सीधी पावे किसी नु पैड़ी लगे।
0: नहीं मैं की क्या
1: जी,
0: ढा दे मस्जिद, ढा दे मंदिर, पर एक बंदे दा दिल ना ढा,
1: पीरो बाबा ही ढा दे। बार बार बोल के क्यों कह रहे हो।
0: इसलिए कि मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना वो सिद्ध दिल को चीर के निकल,
1: हाय हाय हाय हाय, वो फिर दिल ही टा दे, नहीं दिल काट दे,
0: क्योंकि बाबा फुका सच तो किसी को पसंद ही नहीं ना है।
1: सच वाकई किसी साडे कल्चर फिर किसी को नहीं पसंद, चुभदा है ना, चुभदा है।
0: अच्छा झूठ मारो ना, मैं जनाब बड़ा खड़पैंच हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं यूं हूँ, दिल चाहे और इतने जिम्मेदारा टैलटा साफ कर
1: दे। इसी तरह होंदा है ना
0: जी,
1: ए ग्रीन कार्ड वाले जो साढ़े बेचारे आए ने उन्होंने भी अज उन्होंने शाउट आउट दे दी, एक बेचारे जो आए ने कुछ
0: जी,
1: कई मरतबा हमारे से इस तरह हुआ है कि उन्होंने पीछे बैक में जो है ना अपने वालदैन को ये कहा है, महंगी महंगी गाड़ियों के साथ पार्किंग में खड़ी महंगी गाड़ियों के साथ तस्वीरें खिंचा के पाकिस्तान भेज के, तो ऐ पप्पू बच्चा माँ दा सच्चा बन के बैठे होंगे ने, लेकिन सच में जो यहाँ उनके साथ हो रहा होता है वो तो किसी को वो नहीं बताते इसीलिए। और सबसे दर्दनाक उनकी जो वो है ना सेंटेंस उनके मुँह से जो निकलता है ना वो ये है कि चलो पिछे वाले खुश रह जाओ, असी तो इतने जलील हो ही गए।
0: हकीकत है बाबा फूका, मैं भी
1: तो ग्रीन कार्ड वाले यंगस्टरों के लिए मेरी तरफ से शाउट आउट है कि उन्होंने ये हिम्मत की कि वो यहाँ आए और उन्होंने मेहनत करके जो भी आया, लेकिन बात वही है ना अपने बारे में नहीं सोच रहे, अपनी जिंदगी अपने पीछे वालों के लिए कुर्बान कर रहे हैं
0: बाबा।
1: और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे,
0: मैं ना एक बंदे को जानता हूँ जो पाकिस्तान जब यहाँ से गया ना यहाँ पे, वो देखें सबसे पहले कि काम में कोई मेहनत नहीं है, यानी कोई भी आप काम करते हैं हक हलाल का रिज़्क कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे सारे आंखों पे, लेकिन
1: बिल्कुल
0: बाबा फूका वो ना यहाँ पे किचन में ना बर्तन धोते थे रेस्टोरेंट में। पाकिस्तान जब लैंड हुए ना ना पहिरा ने चिट्टा काटन
1: दा सूट माया लगी पहुंचे की गल ते।
0: अच्छा जनाब सोने
1: गुठियां पाईया
0: गले में चैन
1: या
0: थले चमकदार लिश्कदार की बूट बिल्कुल
1: ते ऐठे हट हो रहे यूरोप विच।
0: अच्छा वहाँ पे किसी ने पूछा कि जी आप क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं ते वहाँ पे जो है ना वो सुपरवाइजर लगा हूँ।
1: वाह बर्तना था स्प्रे मारा था सुपरवाइजर।
0: अच्छा खैर वो जनाब और जो उनके साथ होते हैं ना ये जो 53% जो फेल हुए हैं,
1: ठीक
0: है, ये उनके साथ के जो है ना क्लास फेलो होते हैं। अच्छा वो कहते हैं यार ऐ बंदा अगर वहाँ डेनमार्क में जाके सुपरवाइजर बन सकता है तो मेरी नली बगती है।
1: बिल्कुल
0: नली जो है ना वो नाक बहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो भी फिर हिर्स करके ना अपने माँ बाप को किसी तरीके से तंग करते हैं,
1: करते हैं,
0: तो फिर जमीनें बेचते हैं, माँ
1: अपना नुकसान करते
0: हैं, बेचते हैं, कर्जे लेते हैं, फिर जनाब डंकी लगाते हैं।
1: बिल्कुल
0: कोई गरीब तो जो है वहाँ पे पानी में समंदर में डूब के मर जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो कोई जो है पहुंच जाते हैं, फिर उनका जो हाल होता है। फिर बाबा फूका साहब जो हम लोग यहाँ पे सेटल हैं ना जिनके बिजनेस हैं जिनके रेस्टोरेंट हैं, फिर जो हम उन गरीब
1: के साथ जो ज्यादती करते हैं
0: तनख्वाही नहीं देते
1: वो फायदा उठाते हैं हम उनका। और यहाँ पे भी हमारे जो है ना इन लोगों को थोड़ी सी अक्ल करनी चाहिए क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं कि ये एक मजबूर बंदा है उसकी मजबूरी का वो इतना फ़ायदा उठाते हैं, लो वेज पर उससे काम कराते हैं 12-12, 13-13 घंटे। मैंने यहाँ तक कि खुद एक रेस्टोरेंट पर काम किया है जहाँ पर मैंने देखा है कि उनका वर्कर उसकी इतनी बुरी हालत थी कि उसने अपने सर पे परना बांधा हुआ था, इतना शदीद उसको सर दर्द था, और उसने आके अपने बॉस के आगे हाथ जोड़ के कहा कि यार मेरी तबीयत नहीं ठीक मुझे घर जाने दो। तो उसके बॉस ने उसके कमर पे ऐसे हाथ मार के उसको वापस किचन में भेज के जा कहता था पुत्र जा मेरा पुत्र काम कर बाद देखी जाएगी तेरे सिर दे दर्द
0: नू। नहीं ये तो
1: इस किस्म की ज्यादतियां वो
0: ये
1: लोग
0: तो यहाँ सहर है ना। अब बाबा फूका साहब आप रेस्टोरेंट में जो है ना वो बर्तन मारने की जॉब करनी है, जब आपने वहाँ पे जॉब करने जाना है तो वो कहते हैं जी आपकी हम हफ्ता जो है ना वो ट्राई लेंगे कि आप बर्तन सही तुम मांजते हैं कि नहीं मांजते।
1: फ्री में काम जो कराना चाहते हैं
0: बाबा फूका
1: क्या पहुंच गया ना मैं पहुंचे आया बंदा तो अंदर से पीरो फिर शक कर फायदा नहीं मेरी फूक मेरी आवाज आया होगी वजू टूट जाना लेकिन इन्हें असर नहीं होना भूख इतनी जोर थी इन्हें असर नहीं हो सकता क्योंकि इन्हें जड़ा ना इन्होंने अपने जिंदगी जड़ा ने तहिया किया है कि इस तरह के बेचारे लोगों ने ना ज्यादती करनी।
0: अच्छा बाबा फूका साहब
1: मैं यार कितनी बारी क्लियर किया एवं गद्दी नहीं लभी एवं नहीं लभी बाबा फूका सोच के बनिया खूह चिल्ले कट्टे ने जफर साहब मेरे नाल आयो तुसी मेरे नाल खूह बैठो तो तको तुहाडी शायरी नू चार चन्न लगणगे मैं चिल्ला कट्टांगा तुसी शायरी कढ़ियो।
0: अच्छा अगू पता की लिखदे
1: अल्लाह खैर करे हुण तो क्यों पैणी मूंह ते हुण आपको क्या पता दस्ताने पा के दो कूड़े तुसी हाथ मारो तको कितने पैसे निकल देने मेरे घर फेंट पई यार
0: नहीं मैं ओहो मैं आपकी नहीं लेकिन ये जो कचरे में हाथ डाल के बोतलें निकालनी या वो
1: सारी हमारा रॉस्किल फेस्टिवल जो हुआ है
0: जी
1: उसके ऊपर बकायदा न्यूज में आया
0: तुसी करवाया सी?
1: नहीं नहीं मैं नहीं कराया मैं उते नहीं डेनमार्क ही जो है सर की हो गया।
0: अच्छा अच्छा
1: मैं उते गद्दी लाई सी पाक कोने च लोगों अकल दुआना से फायदा कोई नहीं आया कोई नहीं
0: शिमरवा को नहीं खवाया किसी
1: ने दो शो हो गए इतने किसी ने खवाया तो उ किन्ने खवाना उसमें जो है ना वो जो फेंट कट्ठे करने वाले लोग हैं उन्होंने 10-10, 12-12 हजार की दिहाड़ लगाई है समझ रहे हैं आप पीरो
0: जी एक बड़े ही मोहतबर अंकल
1: माशाल्लाह
0: जनाब हमारे बड़े ही प्यारे हैं लिखते हैं रजा जी बाबा जी की बातों का लुत्फ आ रहा है मजा मजा में इतना सच اللہ ان کو خوش رکھے.
1: آمین جی, بہت بہت شکریہ سر.
0: یہ دیکھیں جی, پیر تو اصل ہیں جو جنہوں نے بابے پھوکے کو دعا دے دی.
1: کیا بات ہے جی, دعاؤں سے تو ہم یہاں پہنچے ہیں. اگر انہوں نے دعا اور دیتے رہے تو اللہ خیر کرے چار پانچ اور کو چونا لگا دوں گا میں آج. رائے راست پہ لیں گے. سوری
0: بابا جی, یہ تہاڈی زبان جو ہے نا یہ پھسل جاتی ہے.
1: وہ سر وہ فلٹر نہیں ہے نا, فلٹر میرا ملوانا ذرا, لیکن وہ پاکستان میں منگوانا پڑے گا.
0: رب دلاں
1: بابا ٹا دے.
0: اچھا لو جی, اگے کی لکھ دینے, آپ اس لڑکے کو مار دیتے سر, درد ختم. بابا جی
1: جی,
0: اے بھائی ظفر جڑے نے نا او لگدا اے نا
1: اج پورا بابا جی دا ٹیسٹ لوان گے.
0: ٹیسٹ نہیں, انہاں سارے بابے دی کمزوریاں پھڑی ہوئی ہیں.
1: کیا کہہ رہے ہیں
0: وہ؟ کہتے ہیں کہ جب اس لڑکے کے سر میں درد تھا جس نے وہ کپڑا باندھا ہوا تھا,
1: ہاں جی,
0: تو آپ نے اس کے سر پہ پھونک مار دینی تھی, اس کا درد.
1: اس ٹائم بابا اپو ذلیل ہو رہا سی تے بابے نے کی پھونک مارنی سی؟ اس ٹائم تو گدی کول کوئی نہیں سی, میں تے اپو اس ٹائم برتن تو ہو رہا سا نال, میں تے اپو پرنے بندے سا.
0: اللہ اکبر.
1: باتھ روم جڑے نا پیپر میں چینج کیتے سن اس دن.
0: اچھا بابا جی,
1: اس ٹائم والے گدی نشینی نہیں آئی سی میرے کول. ظفر صاحب سمجھا کرو نا گل.
0: ویسے بابا جی, آپ نے جو کیا کہتے ہیں اس کا پھر سٹرگل جو کی ہے,
1: ہاں جی,
0: اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھل بھی دیا, آج گدی دے دی ہے.
1: آئے آئے, دیکھیں نا, اللہ جو ہے نا ہر انسان کو توفیق نہیں دیتا. توفیق بھی کسی کسی کو ملتی ہے.
0: 10 منٹ رہ گیا بابا.
1: بالکل,
0: میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں.
1: سنائیں جی سر.
0: میں نا ایتھے ریڈیو پہ پروگرام کر رہا تھا عید والے دن,
1: ماشاء اللہ,
0: اتوار کو پڑی ویسٹ برو مسجد میں عید.
1: بالکل.
0: تو جناب میں نے کہا آگے نا اپنے سامعین کو خوش کرتے ہیں.
1: بالکل کرتے ہیں.
0: اچھا آیا, ریڈیو لگایا, لوگوں کو گانے شانے سنائے, کوئی قوالیاں شوالیاں سنائی, باتیں کر رہے تھے, اسی طرح ہنسا مذاق کر رہے تھے. تو میں نے کہا یار مجھے نا بھوک لگی ہے, تو آج عید کا دن ہے تو ضرور کسی نہ کسی کے گھر نہ کھانا بنیا ہوئے گا اور ساتھ میں کھیر بھی ہوئے گی,
1: ماشاء اللہ کا ضرور.
0: یقین کرو ایک بھائی جان آ گیا تھے کھیر لے کے.
1: واہ, تسی پھر بابے تو زیادہ خوش نصیب تسی ہوئے
0: جناب.
1: کیا بات ہے,
0: ہے نا,
1: کیا بات ہے. لیکن پھر پیراں دے پیر, پھر ساری گل تانوں تے لبنی نا, بابے دا دل نواں نواں ایتھے ٹھکانہ لگیا.
0: لائیو
1: شاعری کرانگے انہاں دے نال, کوئی مسئلہ نہیں, مینوں پتہ ہے, گارنٹی ہے. لکھ لو ڈیٹ ٹائم نوٹ, تسبیح پھری ہے.
0: بابے پھوکے دا نواں نام پا چھڈیا جی.
1: اللہ خیر کرے,
0: سلامت رہے بابا کلیننگ شاہ جی سرکار.
1: کیڑے کلیننگ؟ اس ٹائم میں پیر نہیں سا. پیرو کے کردے ہو, میں ہن پیر ہویا. اس ٹائم تے میں وی گرین کارڈ والا ہی سا. نہیں ویسے گرین کارڈ والا تے میں نہیں ہاں, لیکن
0: نہ تواڈے کولے تے او سنے سوہ پاسپورٹ ہے.
1: ہائے ہائے, گلے چ پا کے جاؤ, چار رشتے فری لبدے نے. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, اپنے گلے میں پاسپورٹ ہے کہ جب آپ کسی بھی ملک میں چلے, ہمارے مسلمان ملک میں چلے جاؤ, خاص طور پاکستان پہ, انہوں نے تکنا سجے کھبے بوتھا کیسا ہے کہ میں کہنا یہ میری بیٹی ہے, آپ شادی کر لیں, کوئی پرابلم نہیں, آپ کے پاس پاسپورٹ ہے, اس کو باہر لے جائیں.
0: یہ
1: نہیں پتا کیسے ایسے برتن تو ہوتے ہیں آپ.
0: بس
1: صرف پاسپورٹ دکھا دے تک رشتے کی لائن لگتی. رشتہ ڈاٹ کام کیا چیز ہے؟ بابا ڈاٹ کام اگر کسی نے اپنے ستارے ملانے, بابا سے رابطہ کر سکتے ہیں, اچھے اچھے رشتے ملیں گے آپ کو.
0: کنڈلی
1: بالکل آ کے گل کرو, دسو بچہ کس طرح کا ہے, کس ٹائپ کی بچی تمہیں چاہیے, ملا دوں گے, کوئی پرابلم نہیں, کوئی پرابلم نہیں. کسی بھی کام میں آپ کو کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. اپنا کام جو ہے نا آپ کھلے دل سے اچھے طریقے اور محنت سے کریں. مورل یہ تھا اس کا, یہ جو ہمارا تھا نا لوگ کیا کہیں گے, اس کو ہم اختتام پہ ذرا موضوع کو کریں. شگل میلہ اپنی جگہ. کسی کام میں آپ کو شرم نہیں کرنی چاہیے, محنت کریں اور اپنی دل لگا کے کام کریں. اللہ تعالیٰ حلال کی کمائی میں اتنی برکت ڈال. دوسرا پیسے کے پیچھے بھاگنا آپ نا ہے نا چھوڑیں, पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके पीछे भागना छोड़े, आप अपने आप को काबिल बनाएं कि काबिलियत आपके पीछे आए।
0: अल्लाह है बाबा है अल्लाह
1: तो क्या ना बाबा पीर आए अल्लाह ना करो मैं टह जाने जी कुर्सी, अपने आप को काबिल बनाए ताकि काबिलियत आपके पीछे आए, पैसा अल्लाह ताला खुद दे दे
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यानी अपने आप खुद एतमादी
1: बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, और जो काम करे दिल लगा के अच्छे तरीके से करे, देखे अल्लाह ताला आपके कमाई में आपके घर में और सब चीज़ों में खुद ब खुद बरकत डाल देगा। हम चीज़ों के पीछे भागते हैं, 2000 की अच्छे भले पैसे कमा रहे होते हैं, 2000 और किसी ने देते तो उतने चले गए, फिर जलालत अल्लाह दसा।
0: जनाब जफर साहब मेरे वास्ते लिखते हैं, रजा साहब आप छोटे जे बाबा नहीं, यानी उन्होंने जनाब जफर अवान साहब भाई शुक्रिया आपका।
1: आप छोटे
0: जी,
1: तुझे तो पीरा तो पीर हो,
0: वही कह रहे ना कि तुझे छोटे नहीं है, यानी
1: हाँ गल की थी जफर साहब, ठोको ठोको ठोको पीरा तो पीर पीर तो सालगिरह भी आ रही स... रेडियो शवारमे खवाने की तौफीक दे, डोनेशन करो बाबे की गद्दी से जाओ, कोई फूल फूल अगरबत्ती नहीं आई इस बार पीरो, मैं पिछली बार वैसे मंगी सी अगरबत्ती, लेकिन रहन दे अग लग जानी है बाबा साड़ जे गद्दी तो किसी ने लैनी है बाद विच, लेकिन मेरे आला काम नहीं कर सकते, तस्बीह एक ही फिरदी है, फिर दिल भी फिरदा है, नाल बावे दे ठुमके भी फिर दे, ओ सॉरी।
0: वैसे ये हमने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि हम जो अपने शो में जो है ना वो गाने भी सुनाया करेंगे,
1: बिल्कुल सुनाया करेंगे,
0: लेकिन हमारी जो है ना वो एक थोड़ी सी क्या कहते हैं उसका मजबूरी है,
1: मजबूरी
0: ए जेडे फेक फेक बुक नहीं फेसबुक
1: इससे बेहतर है कि वो ना बाबे की जो है ना ये फजूल बकवास सुन ले वो ज्यादा, सॉरी सॉरी गलत हो गया मेरी, मतलब एजुकेशनल बातें सुन ले मेरी,
0: इससे बेहतर इसीलिए कह रहा हूँ कि लोग आपको शवारमा इसलिए नहीं भेजते, ये जो आपका फिल्टर नहीं है ना, टाटे मस्जिद टाटे मंदिर
1: और पीरो 70 बार आज शेर कह देते यार बस हो गए।
0: नहीं मैं कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि लोगों को ये याद हो जाए
1: सर, फिल्टर वाले जो है ना, फिल्टर वाले जो ये जो कहते हैं आस्तीन का सांप जिसको कहते हैं, जड़ा इंजा आगे करता है, उस तो बेहतर फिल्टर वाला बंदा, बगैर फिल्टर वाला बंदा होता है, कम अज कम मुंह ते गल करता है ना। मेरा प्यो कहता है अल्लाह जन्नत नसीब करे कि जो मुंह दे आके चार गाला कर देना उदे ज्यादा यकीन कर, जो पिछू एंड
0: ना जो मुंह दे आके तरीफा कर जाए,
1: नहीं नहीं उदे ते यकीन ना करो, तौबा तौबा तौबा तौबा तौबा तौबा।
0: वैसे आपको कभी किसी ने मक्खन में नलाया?
1: मक्खन में क्या नलाया, मैंने मसाला ला के नूद किया गया है तुम, कि मक्खन मक्खन तो बड़ी दूर की चीज है, पहले मसाला लाया फिर अनूद किया फिर उदे तल लिया, तल के बाबा निकलिया फ्रेश फ्राइड मसाला वे थे।
0: अच्छा जफर अवान साहब लिखते हैं अगर आप यहाँ पे जल के राख हो गए आपका मजार बन गया तो वो कहते हैं मजार से शेख रशीद साहब को बिठाएंगे, ये शेख रशीद को आप जानते हैं या आपके?
1: जी सर मलेदार है साड़ा,
0: पिंडी देने
1: मलेदार है ना साड़ा, लाल वेली साड़ी छत तू नजर आंदी
0: माशाल्लाह,
1: क्या बात है,
0: तो उन्होंने भी बबे शेख रशीद नु भी वैसे वैसे मैं ना
1: बड़े वो पहले ये अपनी बात करने का तरीका तो ठीक कर ले वो, फिर उदी गल करांगे।
0: ਦੁਬਾਰਾ
1: ਦੱਸਿਓ ਬਾਬਾ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲਵਾਂਦਾ
0: ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਲਕ ਵਲੀਦ
1: ਮਲਕ ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ
0: ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ
1: ਪਾਕਿਸਤਾਨ
0: ਅੱਲਾ ملک ولید صاحب کیا واقعی آپ پاکستان میں بیٹھ کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں
1: جی پاکستان سے بالکل
0: نہیں میں بھی پاکستان سے
1: ہوں نہیں نہیں لیکن یہ فزیکلی پاکستان بیٹھے ہیں
0: فزیکلی
1: پاکستان یس بابے دی پہنچ
0: بابے دی پہنچ
1: بابے دی پہنچ میں ہوں فون کرا تو کاش وارما چلا جانا میرے گھر نہیں آنا
0: بابا پھوکا تو اڈے پیران دی بھی ہو گئی جی آج
1: کیوں تو انہوں بھی رگڑ دیتا کسی
0: نے اے بھائی زفر امان نا اللہ سے ہاتھ ہو
1: گئے ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਫਿਲਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਟਾਦੇ ਮੱਝੇ ਟਾਦੇ ਮੰਦਰ
0: ਟਾਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਟੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟਾਵੀ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ
1: ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ ਮਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾ
0: ਦਿਓ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੇ 10 ਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਾ ਪੜਾ ਹੈ
1: ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਲਤ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾੜ ਰਹੇ ਹੋ
0: ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ
1: ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਨਾ
0: ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਉਹ ਮਲਕ ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ
1: ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਨਾ ਕੋ ਸਰ ਤਸਬੀਹ ਹੈ
0: ਅੱਲਾ
1: ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ
0: ਇਹ ਜ਼ਫਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ
1: ਜ਼ਫਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ
0: ਇੱਥੇ ਡੈਨਮਾਰਕ
1: ਡੈਨਮਾਰਕ
0: ਅੱਲਾ
1: ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ ਫੁਸ ਪਾਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਆ
0: ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ
1: ਇਜਾਜ਼ਤ
0: ਇੰਨੀ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ
1: ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਸਾਮੀਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਫੁੱਗਾ ਦੀ ਬਾਬੇ ਫੁੱਗੇ ਦੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਂ ਰਹਿਤੇ ਹੈ ਸਭ ਅਮਨ ਵ ਅਮਾਨ ਮੇਂ ਰਹੇ ਔਰ ਉਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਨਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਆ ਕਹੇਂਗੇ ਉਸਸੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਇਹ ਜੋ ਹਮਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਮੇਂ ਵੋ
1: ਬੰਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾਇਤ ਦੇ ਜੀ ਸਭ ਕੋ ਦਾਇਤ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮੇਂ ਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਉਨ ਸਭ ਕੋ ਦੇ
0: ਆਮੀਨ ਔਰ ਸਾਮੀਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਆਏਂਗੇ ਹਫਤੇ ਦੋ ਤੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੇਕਿਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਇਤਵਾਰ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਜੀਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤੋ ਹਮ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਾ ਬਾਬੇ ਫੂਕੇ ਦੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਤੋ ਉਸਮੇ ਲਗਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਇਸਕੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਵਾਰ ਕਾ ਦਿਨ ਹੈ ਲੋਕ ਹੱਸੇ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੇ ਔਰ ਕੁਛ ਬਾਬੇ ਫੂਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕੁਛ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ
1: ਚਵਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਸੀਹਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ
0: ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਲਟਰ
1: ਸੋਰੀ ਸੋਰੀ ਫਿਲਟਰ ਸੋਰੀ
0: ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉਸਕੋ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ
1: ਸੋਰੀ ਪੀਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ
0: ਤੋ ਇਨਕੀ ਬਾਤੋਂ ਪੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਸੋਚੇ ਉਨ ਪੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰਦੋ ਪੇਸ਼ ਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਡੈਨਮਾਰਕ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ
2: آپ اور ہم وطن ایک سنگ نئے رنگ نئی امنگ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84 ای میل ریڈیو سنیپلائے

0: Batalha nem é, hein?
1: हजारों दिलों की धड़कन आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।

0: इस कौम का या हमारे पाकिस्तानी कल्चर का इससे ज्यादा बुरा हाल क्या होगा, मतलब शायरी मुजार बढ़ाने के कि सच्ची मुजीदा
1: पर है 33 साल। तमाम जितने भी फेडरल मिनिस्टर्स या एडवाइजर्स हैं उन सबको

0: पर है 33-21 आप और हम वतन एक संग
1: लैड ना डुबना सानू।